0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है।
1: जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए?
0: अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। चार बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुके हैं, वहां से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं घायलों को भी।
2: सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं?
0: इनके ऐसी घटना को पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इनपे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए।
1: आग जब लगी थी सर,
3: the other big story of the hour, it's a political quake in the state of West Bengal. A full-blown war has exploded in the Trinamool Congress amid the forged signature controversy. Now, Mamata Banerjee's Trinamool Congress has been divided into two camps, Mamata loyalists and the camp of rebels. Expelled TMC MLA Rituprata Banerjee reached the assembly about 45 minutes ago, claiming that he has the support of 59 MLAs backing him for the key position of leader of opposition in the West Bengal Assembly. This comes after Mamata Banerjee branded the expelled MLAs Rituprata Banerjee and Sandeepan Shaha as traitors, accusing them of acting at BJP's behest to break the party. A lot of reactions coming in.
4: विधानसभा में कुछ काम है, बाकी बात में बताएंगे।
5: दादा, लगभग कितने विधायकों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है?
4: विधानसभा जा रहा हूँ, कुछ काम है, बाकी जो बात है सब बात में बात करेंगे।
5: लेकिन क्या चिट्ठी आज ही दी जाएगी?
4: बाकी बात में बात करेंगे।
5: फिर भी अब तो साफ हो ही गया है कि आपका एक खेमा बन रहा है, अगर कुछ बताए कितने विधायक
4: आपके साथ? बात करेंगे। थैंक यू।
6: जाएगा ना तब
7: देखेगा।
6: अभी जाएगा, थोड़ा मीटिंग करके आएगा तो बता सकेगा। अभी
8: नहीं,
6: मैं आया है पे बिल लेने के लिए, उसलिए हमने आया है। जो होगा हम निकलेगा जब तब बताएगा। नहीं, हमने मीटिंग के लिए नहीं आया है, पे बिल के लिए आया है। मीटिंग होगा तो वहाँ पर रहेगा, हो जाएगा तो आके जरूर बताएगा।
3: Yesterday, TMC Chief Mamata Banerjee said these were traitors working at the behest of the BJP party.
9: আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। কি সিগনেচার কা কনফিউশন হে? আগর কিসি কো কনফিউশন হে तो पहले इसको फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। वो हैंड राइटिंग में कोई बोल्ड अक्षर में लिखा, कोई स्मॉल अक्षर में लिखा, ये तो जस्ट व्हेदर दे वर प्रेजेंट और नॉट, व्हेदर दे हैंडेड ओवर दिस टू पार्टी और नॉट।
3: Joining me live, NDTV 24/7's managing editor Padmaja Joshi. Also joining me live from Kolkata is Hrithik. And from the newsroom, we have Manogya Loiwal. I'm going to go across to Kolkata first, where Hrithik is standing by. Hrithik, what is happening inside the assembly? High drama unfolding just about an hour back. We've had Padmaja, we've had you, we've had Manogya bringing us all the details. But for now, I want to understand what is happening inside the assembly with Rituprata there showing his strength in terms of the MLAs who are backing him for the position of leader of opposition.
10: Well, Vedika, let me bring you to our viewers that what exactly happening inside the premises of assembly. We bring live broadcast from right at the doorstep of the assembly. But what we are given to understand just a short while from now, the very crucial meeting headed by Rituprata Bandyopadhyay and Sandeepan Shaha, the rebel two leaders, so those have parted their way from Trinamool Congress, has just concluded. In that particular meeting, nearly 59 MLA, rebel MLA of Trinamool Congress party, they have. They took part, and what we know now, the another MLA, he is also arriving over here.
11: Sir.
10: Now the MLA is just, his car is moving inside the assembly. What we are precisely being told now, after the conclusion of that crucial meeting, all the MLAs, they have headed to the room of

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
2: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
3: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
1: हाउ विल यू सेलिब्रेट?
2: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
4: यू नो यू रिमेंबर यू प्रॉमिस मी दैट यू विल कम टू कबिनी एंड डू एन इंटरव्यू विद मी। यू लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट?
5: दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर स्टेट दैट टू द एंटायर कंट्री दैट आवर केरला इज सेक्युलर।
6: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
1: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
7: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
8: I think that Shiv is not, was not the only incident.
9: Tabhi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
0: মিঠা या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: Well, listen, big breaking news coming in at this hour on our top story coming in from Karnataka. Well, the suspense continues on the names of the cabinet ministers. That's right. While D.K. Shivkumar is going to take over as the chief minister, there's still speculation around about who exactly will be a part of his cabinet. D.K. Shivkumar has said that the names of the cabinet ministers are not final yet. This is what the chief minister designate has gone on to say. D.K. Shivkumar has further added that Delhi will send the names after 10 a.m. today. He's even

0: Shah have offered condolences along with the Delhi Chief Minister on this tragic incident. Prime Minister Narendra Modi has said, and I'm going to quote him here, "The loss of lives due to a fire incident in Malviya Nagar, Delhi is tragic. My condolences to those who have lost their loved ones. Wishing a speedy recovery to the injured. Authorities are providing all possible assistance to those affected." Now, we're getting Saurav Bharadwaj also who is speaking. Let's just cut across.
1: जिम्मेदारी तय करनी चाहिए. इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए. ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए. फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है. ये आपसी एका है. इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं. मंत्री आशीष सूद से मैं जानना चाहता हूँ, पालम में 18 फरवरी को आग लगी थी, जून शुरू हो गया, कब आएगी रिपोर्ट तुम्हारी? विवेक विहार की कब आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो आ नहीं रही है.
2: मैं दो तीन मिनट बाद
1: देखिए, फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम बहुत खराब है. सब जगह से यही रिपोर्ट आती है कि आग लगने की सूचना के बाद 45 मिनट से डेढ़ घंटा फायर ब्रिगेड को लगता है. देखिए, अब आप देखिए डेढ़ घंटे में आई है. मगर आशीष सूद ये बात नहीं करेंगे. आशीष सूद कहेंगे नहीं, जो गरीब मरा है ना उसी पर दोष डाल दो. तो ये गलत है. सरकार एक नंबर की झूठी है. सरकार झूठ बोलती है. आशीष सूद झूठे हैं. आशीष सूद से मैं पूछना चाहता हूँ, पालम इंसिडेंट की रिपोर्ट कहाँ गई? कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई क्या? वो हर चीज पे झूठ बोलते हैं.
0: Right, that is the Aam Aadmi Party Delhi Chief Saurav Bharadwaj, who is questioning what really happened there. He is asking for accountability, and his claim is that after speaking to eyewitnesses, what he is hearing is that the fire tenders took about an hour and a half to get to the spot, and it was the people in that area, around that area, who were helping those trapped inside the hotel to be rescued. But this is a devastating fire that has taken place in South Delhi and has claimed the lives of at least 21 people and left several injured. The latest that we have is that 40 people have been rescued. The blaze broke out early this morning in the basement of the hotel in Malviya Nagar, triggering a massive rescue operation. Firefighters battled thick smoke and flames as guests, and many of them are foreign nationals who were undergoing medical treatment in Delhi, who were trapped inside that five-story structure. Authorities say about 40 people were staying in the hotel at the time. While rescue efforts have saved several occupants, investigations are now on to determine what sparked that deadly fire. We're being told that most of these people were foreign nationals who were there for medical treatment, and also that most of these people who were trapped inside were asleep when the fire broke out.
3: देखिए, 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी. 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था. इनिशियली 7 गाड़ी टर्नआउट हुई थी, फिर कॉल जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियाँ टर्नआउट करी गई. जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है. और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है. हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है. लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है. और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है. बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए. पुलिस ने उसको बिल्डिंग को सर्च कर. देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है. तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं.
4: ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से. अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारे?
5: नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी. जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया.
4: रास्ता कितने हैं अंदर?
5: एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है. ये सामने से, हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता. ये तो चैन लॉक थी, ये तो ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है. इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले.
2: हाँ
4: तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे?
2: रूम बना हुआ उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले सारे।
6: सात जने थे जो हमने निकाले,
7: मैं खुद ने तोड़वाया,
6: सात जने हम लोगों ने निकाला।
4: देखिए ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। सात लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना हो बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में सात लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है,
6: एक ही रास्ता सर, बेसमेंट का अलग था उसमें लॉक है, तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा। फिर
2: अनकॉन्शियस जब घुसे हम अनकॉन्शियस निकाले, मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से, मैंने खुद सीपीआर दिया है, तीन पेशेंट को मैंने सीपीआर देते देते शिफ्ट कराया।
4: तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप
2: नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे, कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है, मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे सीपीआर दिया है।
4: दो, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें सात आठ लोग मौजूद थे, एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे
2: बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, हाँ एक ही रास्ता है, और कोई
7: दूसरा
2: नहीं, नहीं वो बीच में से ताला इसमें लगा होता बेसमेंट में जाने,
4: छत छक जाने के लिए उस पर ताला लगा हुआ था?
2: नहीं ताला कहीं नहीं था, ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे इसके बाहर ताला लगा हुआ था, ये जो ये कटी हुई है कैन देखिए,
4: तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी,
2: हाँ बाहर से बढ़ सकते हैं, ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था, लोग जीने पे पड़े हुए हैं, एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया है, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था, कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं, अभी लास्ट हमने दो पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ, वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल थे, वो बाथरूम के अंदर जीने उस पर चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हूँ।
4: आप देखिए आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी, चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है, और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर,
2: बाथरूम के अंदर से निकाले था,
6: वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, ग्लास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था, वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा जब भी नहीं टूट रहा था,
2: सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में टोटल पैरों में कांच बड़े हुए,
6: इकट्ठे एक साथ घुसे थे, एक दो तीन चार,
4: हाँ वो टूट ही रहे, हमने रोड वाले नहीं टूट रहे थे ना सारे, वो
2: दो या तीन पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी, हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जाते जाते
6: हमारे साथ थे।
8: बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है, और पहले तो घायलों को बचाना है, उसके बाद क्या रीजन हुआ इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। जब से एक बीजेपी की सरकार बनी है हम लोग लगातार फायर के कारणों को लेकर के उसके रियल कॉज पे जा रहे हैं, और बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी घटना देखने को मिली है, हालांकि पीछे बहुत भयानक भयानक घटनाएं हुई हैं, मगर ये कहां चूक हुई है इसकी निश्चित रूप से जांच जरूरी है।
9: देखिए ये तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और डीएम डिपार्टमेंट के लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ सबसे पहले आने वालों में हम यहाँ हैं, 9 बजे जैसे ही ये घटना हुई है उसके बाद से यहाँ पर पूरे इस फायर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और यहाँ के कुछ स्थानीय जो 4-5 बच्चे हैं उन्होंने अंदर घुस करके जिस तरीके से अपनी जान पर खेल करके लोगों को बचाया है, और ख़ास करके दिल्ली पुलिस के 4-5 सिपाही जो मालवीय नगर थाने से हैं, लाडोसराय से हैं, वो बिना किसी
4: उन सारे लोगों ने सतीश जी बात की बहुत अच्छा बचाया, राहत और बचाओ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, हाथों
9: नहीं, अभी इसमें अभी ये लगभग 47 है, 47 का नंबर है, और जो कैजुअल्टीज़ हैं वो लगभग 20 के आसपास हैं, और अभी गंभीर जो हैं वो घायल हैं 9 के आसपास हैं, टोटल 47 नंबर है।
10: 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है, शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा, उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं, और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहाँ इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग ली, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल।
11: हताहत हुए हैं उनके परिवारों को अपनी ओर से सांत्वना देता हूं। निश्चित रूप से उन सब परिवारों के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है और सरकार कारणों का जरूर पता लगाएगी, जांच इसकी बैठाई जाए और उन कारणों का पता लगाया जाएगा जिन कारणों से ये हादसा हुआ और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको कानून सख्त से सख्त सजा देगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो वर्तमान में बहुत ही हताश, निराश और बदहवास हैं और वो हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। ये बहुत संवेदनशील मामला है जिसमें 20 लोग हताहत हुए हैं। कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
0: Let's bring you an important piece of breaking news coming in on the inferno in South Delhi. According to the Delhi police, the hotel had only a single entry and exit point, something that has been repeatedly stated by the eyewitnesses who spoke to my colleague on the ground. The majority of these victims were foreign nationals. Of the 21 fatalities, we believe most of them were foreign citizens who were there for medical treatment, who were living and staying there to access medical treatment. Additionally, approximately 26 people have sustained severe injuries, the majority again being foreign nationals. Tejshree is on the ground bringing us the latest. Tejshree, the biggest question here is what caused the fire and also was there a no objection certificate? What details do we have? We're seeing a lot of violations. Who is the owner of this hotel? Several unanswered questions at this point as we see that inferno claiming 21 lives.
12: Well, see, absolutely, as you're mentioning about the entry and exit points, in fact, let us also have a look so as to how was the outer structure of the building. Sanjay ji, if you can zoom in and show that perhaps, which seems like where, in fact, the no entry strips have been placed over there. The Delhi police is also standing over there. It seems like that was the only entry point. Now, bigger question over here is that did the building had an emergency exit? Because whenever we talk about any hotel or any kind of such construction, it does have an emergency exit. But was this provision followed, in fact, by this particular hotel or not? There in the picture, you see Ashish Sood. Ashish ji, kya kehna chahenge?
13: अभी एरिया के विधायक बात
12: करें। यहाँ है आप, क्या जांच की जाएगी?
13: क्या बोलने देंगे तो मैं बोलूँगा हर आदमी
12: जी बताइए।
13: देखिए हम लोग अभी क्योंकि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, इसकी एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ DM के मातहत सारे एजेंसीज, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी, DC नगर निगम आदि सबको, DM के मातहत अभी DDM में को साथ में मिलाकर,
14: अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी मामला दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस साथी होगी, अब आप बोल रहे करेंगे कितने होटल
13: बंद। इसीलिए जो कब B&B का लाइसेंस कोई 3-4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला? अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है, ना कागजात है विभाग से, उन कागजों को
12: एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी केवल एक
13: जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
12: कई घटनाएं पहले भी हुई हैं, आगे ऐसे ये पहली घटना तो नहीं है सर, 20 लोगों की जाने का ये पूरी घटना, क्या केवल एक कमेटी बना के जांच की जाएगी? सो दैट इज व्हाट इनफैक्ट द मिनिस्टर इनफैक्ट हैज बीन टॉकिंग अबाउट, लेट अस आल्सो इनफैक्ट ट्राई टू यू नो आस्क हिम क्वेश्चन सो एज टू व्हाट विल द कमेटी बी एक्चुअली डूइंग, बिकॉज दैट इज इनफैक्ट यू नो अ मैटर ऑफ 20 लाइव्स, 20 इंडिविजुअल्स हु इनफैक्ट हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, लेट अस इनफैक्ट आल्सो स्पीक टू देम सो एज टू व्हाट ही हैज टू से। सर क्या सर 20 लोगों की जान, 40 लोग अभी भी इंजर्ड, आपको जवाब क्या? दिल्ली में इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था ताक पर रखी जाएगी, कभी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और कभी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, हर महीने हम इसी तरह से रिपोर्टिंग करते हैं, ये पहली बार नहीं कि इस तरह की घटना सामने आई है। सो लेट अस ऑल्सो इनफैक्ट यू नो अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट द सिचुएशन,
13: हो गया मैंने बाइट दे दी, आई हैव स्पोकन,
12: जिम्मेदारों पर
13: सबको गिरफ्तार किया जाएगा,
12: तो क्या एक कमेटी बनाई जाएगी?
13: मैडम मैंने एक बार सब हर अवैध बिल्डिंग ऑलरेडी उसके लिए कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं, और जो दोषी
12: हादसे के लिए क्यों रुका, एक्शन जब लिया जाए तो हादसे का, ये कोई आम बात है नहीं कि 20 लोगों की इसमें जान गई है। देखिए एवरी टाइम दिस हैपेंस इन फैक्ट यू नो दैट अ इंसिडेंट टेक्स प्लेस एंड देन अ कमिटी इज फॉर्म्ड, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
13: कार्रवाई हो रही है, आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए।
0: इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आवर कॉलीग तेजश्री इज आस्किंग द दिल्ली मिनिस्टर देयर दैट व्हाई इज इट दैट गवर्नमेंट्स आर यूजुअली रिएक्टिव एंड नॉट प्रोएक्टिव, दिस इज अ डेथ ट्रैप एंड क्लियरली वाज गिवन दैट देयर वाज ओनली वन एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट व्हिच इन इटसेल्फ इज अ वायलेशन। तेजश्री इज विद अस, आशीष सूद दिल्ली मिनिस्टर देयर स्टेटिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक थ्रू द पेपर्स, द होटल ओनर विल बी अरेस्टेड, अ टीम इज ऑलरेडी सेट आउट टू अरेस्ट हिम, ऑल एजेंसीज दिस इंक्लूड्स द डीएमसी, द पावर, इलेक्ट्रिसिटी, water departments will probe similar building violations in that area, those that are violating safety norms, and they will be sealed by the evening. Also the big question here is when did the BNB get the license to operate, but we have Tejshree live with us from the spot. Tejshree, most of these people were foreign nationals, there was only one entry and exit point, our colleagues spoke to eyewitnesses, some of them went in to rescue these foreign nationals. What's the latest that we have on those who have been injured and taken to the hospital, while we also talk about how massively the safety norms were violated? I think Tejshree will join us in a moment from now, but I think the biggest takeaway at this point, all right, let's just cut across.
12: क्या कहना है सर?
13: सर
12: एक कमेटी बनाई जाएगी दोबारा से, तो जांच करेगी हमारे साथ, क्या हम एक और हादसे का इंतजार करेंगे?
13: आज आग लगी,
15: मैं तो हॉस्पिटल, हमने बता दिया, हमने सुबह, देखिए आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब मैं 9 बजे से यहाँ हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन में, मेरी प्राथमिकता अभी रेस्क्यू है, और सरकार को जो काम करना है सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी करने की गिरफ्तार करेगी और कॉग्निजेंस लेगी।
12: Well, you see, that is in fact what the leaders have been talking about, that the government will be taking action, and they are over here since 9 o'clock. But bigger question over here is right now that how long will it take for the government to swing into action? Will it again have to take up a wake-up call after one more incident? Because not for the first time, you know, that we have been reporting on such incident. Earlier also, we reported in fact from Saket where an incident of building collapse took place, where around, you know, 4 to 5 people lost their lives.
0: Yes. In fact, Tejshree, do stay with me. I'm Mr. Bharti, former MLA from Malviya Nagar, where this incident has taken place, on the phone line with me. Mr. Bharti, your first reaction, this is a massive tragedy that continues to unfold in South Delhi. 21 dead, more than 40 injured, and there seems to be massive safety norms that have been violated by the owner of this structure.
16: See, it's my constituency, and it's one of the most populated area. It is opposite Max Hospital. And people who come from abroad or within India to get treated at Max, they all flock to these areas for accommodation. I was there since morning at the site in the rescue operation itself. And I have no words to express my deep pain, which I haven't witnessed, which I haven't experienced in there. People died because of, you know, that smoke and the poisonous gases which might have erupted.
0: You say you were there from the morning, Mr. Bharti. I want to understand from you, what are the lapses that you witnessed when you saw people going in, pulling out those who were trapped inside this inferno?
16: See, had fire brigade come in time, see, the event is of 8 o'clock, okay? And I was there almost same time. But then subsequently, when the fire brigade came, by then the fire had already engulfed the ground floor and the top floors. People were jumping out of the window, women, children, and thankfully the local people took initiative. They had put the cushions, etc., outside the building, and from the windows they were jumping, the people were trapped inside. So they got
0: Mr. Bharti, I would ask you to hold on for a moment. We have Minister, Delhi Minister Ashish Sood on the phone line with us. Mr. Sood, you've just visited the area where this huge inferno has taken place. What details can you share with us after your visit?
17: Look, fire tenders from 3 to 4 places were rushed to the site. More than 47 people were evacuated and they have been placed, sent to various hospitals. The CDMO of the area, DCP and the municipal commissioner and the DM are all at the location. We are trying to find out when, because of fire, there is nobody available, no document is available. I have asked the BSES to check whether properly the fire, the electricity connection were issued. I have approached the fire department has approached the tourism department to check the license of the bread and breakfast facility, which was given to them, in which year it was issued, for how many rooms. Then only we will be able to tell you what violations.
0: Yes, which brings me to my next question. Why are we as a government reactive and not proactive? This was a death trap, sir. Only one entry and exit point to this hotel.
17: I am very sorry to say, it is easy to question the government. We in the last fire, after the fire incident, have called a tender to monitor and audit all the commercial
0: establishments.
17: Well,
0: it is easy to question the government, but the government needs to be held accountable, sir. These agencies come under your government. Mr. Sood, these agencies come under your government.
17: I know what comes under my government, and we are very carefully working to resolve all these issues. These issues have been handed over to us as a legacy. These problems have been handed over to us, and we are competently facing them and not running away.
0: No, that's not an answer. You can't justify by saying that as a legacy this has been handed over to you, Mr. Sood.
17: I don't want to enter into an argument.
0: No, we're not arguing here, Mr. Sood. 21 lives have been lost.
17: It is a very tragic incident.
0: I want to understand from you, Mr. Sood. No, I want to understand from you, how often do you probe? How often are inspections also conducted in such hotels by the Delhi government? And of course, you've disconnected the line there, Mr. Sood, but those are questions. And the Delhi government must be held accountable at this time to answer those questions. How often do these inspections take place is the big question here. When you drive through such lanes and by lanes, you see hanging wires, you see overpopulated areas. This hotel had the license, we're being told, to operate only 5 rooms. There were 26 rooms that were operating in this hotel, and many people were staying in the basement of that hotel. Mr. Somnath Bharti is still with us on the line. Mr. Bharti, you were telling us about the lapses that you could see in terms of what you witnessed on the ground. One of the points you've made, and I was going to ask Mr. Sood that, was why the delay, if there was one. You're claiming there was a delay in the fire tenders rushing to the spot. But what else did you see while you were standing at that inferno point?
16: I was surprised to see that even the basement was having you know, the people were staying in, because seven people were brought out half dead, half alive, possibly a couple of them might have already died, from the basement. So we had to break the basement's door, shutter. It was all closed, okay? So that was very upsetting to me, that how come basements were housing people, okay? And then I would say that everything else can be taken care of later, but then this moment, I'm only questioning that all engineers

0: Can you in fact expect another exit point? This is what we have been talking about, that if it has no gap, then where will the exit point be? In my right and left, I cannot see any exit point for this particular building, at the back for that matter as well. This entire left inside is has only windows as of now is what I can see. I cannot see any emergency exit for that matter, the staircases as well. And imagine the condition of those individuals who came to the national capital for their treatment. What must have happened with them?
1: Kesri, you need to stay with me for a moment here. Right behind you, we see NDRF officials, we see Delhi police officials, we see fire officials as well. But Ravish, our colleague, had spoken to some eyewitnesses on the ground. These were the men who claim they stormed inside that hotel. They had to break the chain of a sealed gate that led to the basement to help rescue foreign nationals and others from the hotel when the fire was raging. Listen in to this very, very strong interview with the eyewitnesses.
2: सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से. अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारे?
3: नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया.
2: रास्ता कितने हैं अंदर?
3: एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से. हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता. ये तो चैन लॉक थी, ये तो ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है. इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले.
2: हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे?
3: रूम बना हुआ, उसमें थे पेशेंट. अनकॉन्शियस निकाले सारे.
4: 7 जने थे जो हमने निकाले.
5: मैं खुद ने तोड़वाया.
4: 7 जने हम लोगों ने निकाला.
2: देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है. 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना, बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया. तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है,
4: एक ही रास्ता सर. बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है. तब तक हमें लगा लॉक है, इसमें कोई नहीं होगा. फिर
3: अनकॉन्शियस जब घुसे हम, अनकॉन्शियस निकाले. मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से. मैंने खुद CPR दिया है, 3 पेशेंट को मैंने CPR देते देते शिफ्ट कराया.
2: तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप
3: नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे. कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है. मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे. तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे CPR दिया है.
2: फिर दो, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे. एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे
3: से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए. हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं. नहीं, वो बीच में से ताला इसमें लगा होता, बेसमेंट में जाने,
2: छत चक जाने के लिए उस पर ताला लगा हुआ था.
3: नहीं, ताला कहीं नहीं था. ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे, इसके बाहर ताला लगा हुआ था. ये जो ये कटी हुई है कैन, देखिए,
2: एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी.
3: हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं, ये अंदर वहाँ पे, वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था. लोग जीने पे पड़े हुए हैं. एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था. कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं. अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ. वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल थे. वो बाथरूम के अंदर जीने उस पर चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं.
2: आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी, चूंकि बाथरूम में होता है, तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है. और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर.
3: बाथरूम के अंदर से निकाले था.
4: वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, ग्लास जो है वो टूट ही नहीं रहा था. वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था.
3: सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में, टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं.
4: इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1, 2, 3, 4.
6: हाँ, वो टूटी नहीं, हमने रॉड मारी, नहीं टूट रहे थे ना सारे. वो
3: 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी. हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे
4: हमारे साथ थे.
1: These are the brave people who rushed to help rescue so many of those who were trapped inside the Delhi Hotel Inferno. What a tragedy this has been. You have 21 people dead, which means so many families gutted with this incident. They would be hearing of it. Foreign nationals who have come to India trusting the system, trusting the owner of this hotel for their safety, absolutely let down. NDTV has also spoken with Kesar Singh, who's a chef working in the hotel's restaurant. Let's listen in to what he had to say.
5: हौजरानी के एक होटल में आग लगी और केशव नेगी जी हैं जो कि शेफ हैं, किसी तरीके से जान बचा के भागे। कितनी भयानक आग थी, कैसे आग लगी, क्या हुआ था?
7: अचानक ही सर, वो मुझे को नहीं पता क्या हुआ, मैंने वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा तेल का होता है वो गर्म था, गर्म करते हैं मतलब रोजी करते हैं, उसको हल्के में रखते हैं तो गर्म रहता है, तो जैसे ऑर्डर आता है फटाफट देते हैं। तो मैं आज काम भी नहीं था, मैं खड़ा था वहाँ पर, चाय बनाया मैंने, चाय पी ली। थोड़ी देर के बाद उसमें भ्रम सी आवाज़ आ गई, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं मतलब नीचे ऐसे ना ऊपर है वो, जैसे ऊपर है ही नीचे है ऐसा ना उसका वो रखा हुआ,
5: बेसमेंट में।
7: हाँ बेसमेंट ये बीच में है। अच्छा। हाँ तो उन्होंने मेरे को, मैंने बोला, मैंने मैनेजर को बोला भाई क्या हो गया, आग लगी। तो मैनेजर भी आया, तो मैनेजर ने एक्सचेंजर लिया, उसके साफ करा, नहीं हुआ उससे कुछ भी। तो उसमें भड़क गई बहुत ज़्यादा आग। फिर मैंने जो है ना जो बिजली के स्विच है उसको बंद कर दिए हैं और बाहर निकलने की कोशिश, तो तब तक तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, धुआं करके, मेरे को नहीं पता मैं अंदर से कैसे निकल रहा हूँ बाहर, अंधे की तरह निकला बाहर, मतलब दिखाई नहीं दिया कुछ भी मेरे को।
5: कितने लोग थे उस
7: वक्त? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था कैफे में, कोई नहीं था। अच्छा। सिर्फ हम, मैं था, वो था, मतलब 8 बजे स्टार्ट होता ना काम, वो था, मैं था और एक लड़का था, वो हाउसकीपिंग में रात को रहता, वो चला गया था। अच्छा। बस इतने रहा।
5: ये बगल वाली होटल में आग फिर फैली,
7: फिर पहले उधर लगी, फिर बगल में बाद में आई ना फैली, पहले उधर लगी ना, उधर लगी तो सिलेंडर वेंडर से कुछ नहीं हुआ, मतलब सिर्फ उसी में हुआ इलेक्ट्रिसिटी जो इससे हुआ, मैं स्विच भी बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं कि मैं स्विच नहीं बंद कर रहा, और मैं बाहर निकलने की कोशिश करता, तो मैंने कहा सोलो मैं ऊपर जाऊँ छत में से। अब फिर मैंने कहा छत में तो मुश्किल है, यहाँ तो जाना मुश्किल हो जाएगी, तो मैं मतलब जैसे अंधा आता ना, अंधा से बाहर निकला, तब तक बहुत भड़क गया।
5: होटल में उस वक्त कितने लोग रहे
7: होंगे? वो मेरे को अंदाज नहीं कमरे में कितना, मैं नहीं रहता उस चीज़ के में।
1: That's a miraculous escape for the man who just spoke to us here on NDTV, the chef at the restaurant in the hotel. I'm going to leave you with visuals now, and these are very disturbing visuals that we're seeing of women jumping out of the top floor onto mattresses laid there on the floor by local residents in an attempt to save them. That's the desperate, you know, plea by these people inside the hotel who are trapped for their escape. We'll be back with more on the big stories of the hour in moments from now. Stay tuned.

0: for the individuals as well to escape themselves from this entire situation. Number one, due to the location. Number two, there was only one entry exit. Number three, there were no security measures as of now is what we are given to understand. And if we talk about the owners, they are in fact as of now untraceable. We do not know whether they are arrested or not. As of now, the officials say that they are not arrested. When will they be arrested? And again, what will be happening after their arrest? Because we confronted the Delhi Minister Ashish Sood, who assured that they will be arrested, who assured that there will be checks in each and every hotel. But again, the question is, will actually there be a check on each and every hotel in the national capital, or will it just be on the pen and paper? And that's why we have been, you know, raising the questions over here, because it is not just about the safety of the people. It is about the 21 individuals who have lost their lives. It is also about the individuals who could lose their lives because of the sheer negligence of the government, of the authority.
1: Absolutely. And the MCD now promising action. Remember, this comes just a few days after we had that building collapse incident in Saidul Ajab in Saket, which is not too far from where you are right now. This area is Hosrani in Malviya Nagar. Again, an urban village, as we said, very crowded, congested areas where building bylaws really apply. And that's how many builders get away with, cutting corners and building these, fire hazard, really. So let's take you through all that has taken place in Delhi. It's a devastating fire that broke out in South Delhi, in which 21 people have died, many of them foreigners. 40 others were rescued. The fire, we're told, broke out at around 8:50 a.m. around 8 a.m. at the restaurant of Flourish Stay Hotel. That is one of those the narrow hotels that is there. It was reportedly located in the basement of a five-story building. The fire then spread to another Mikasa Inn next door. Firefighters battled thick smoke and flames as the guests, as we said, many foreign nationals undergoing medical treatment in the nearby hospital, were then trapped inside this five-story structure. Authorities say 40 people were staying in this particular hotel at the time. Rescue efforts saved several occupants, as we heard one of the eyewitnesses talk about how they got mattresses from next door, put it on the road, and people actually jumping out of their floors to the street onto those mattresses, as you can see there. Police are now trying to determine what sparked the deadly fire. Some of the eyewitnesses claim it started from the hotel, from the restaurant and the kitchen there. Sources have told NDTV the hotel had been granted a license under the Delhi government's bed and breakfast scheme. It had permission to have six rooms only, but 25 rooms in all were being operated in this hotel. Some guest rooms were also in the basement. Let's just listen into what some of the eyewitnesses had to say.
2: 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी. 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था. इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई. जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है. और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है, हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस. लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है. और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है. बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को ऑर्डर ऑफ कर. देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है. तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं.
3: हौजरानी के एक होटल में आग लगी और केशव नेगी जी हैं जो कि शेफ हैं, किसी तरीके से जान बचा के भागे. कितनी भयानक आग थी, कैसे ये आग लगी, क्या हुआ था?
4: अचानक ही सर, मुझे को नहीं पता क्या हुआ. मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा तेल का होता है, गर्म था, गर्म करते हैं, मतलब रोज ही करते हैं, उसको हल्के में रखते हैं तो गर्म रहता है, तो जैसा ऑर्डर आता है फटाफट देते हैं. तो मैं आज काम भी नहीं था, मैं खड़ा था वहाँ पर, चाय बनाया, मैंने चाय पी ली. थोड़ी देर के बाद उसमें भ्रम सी आवाज़ आ गई. अच्छा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ. मैं बाहर, मतलब नीचे ऐसे ना ऊपर है वो, जैसे ये ऊपर है ये नीचे है, ऐसा था ना उसका वो रखा हुआ.
5: बेसमेंट में?
4: हाँ, बेसमेंट ये बीच में है.
5: अच्छा.
4: हाँ, तो उन्होंने मेरे को, मैंने बोला, मैंने मैनेजर को बोला, भाई क्या हो गया, आग लगी. तो मैनेजर भी आया, तो मैंने जैसे एक्सचेंजर लिया, उसके साफ करा, नहीं हुआ उससे कुछ भी. तो उसमें भड़क गई बहुत ज़्यादा आग. फिर मैंने जो है ना जो बिजली के स्विच है उसको बंद कर दिए और बाहर निकलने की कोशिश की. तब तक तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, धुआं धुआं करके. मेरे को नहीं पता मैं अंदर से कैसे निकल रहा हूँ बाहर, अंधे की तरह निकला बाहर. मतलब
6: ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे, क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारे?
7: नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया।
6: रास्ता कितने हैं
7: अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से। हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये तो ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है, इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले।
6: हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे?
7: रूम बना हुआ, उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले सारे।
8: 7 जने थे जो हमने निकाले,
9: मैं खुद ने तोड़वाया।
8: 7 जने हम लोगों ने निकाला।
6: देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था एक बार फिर से राकेश।
1: All right, so Delhi hotel horror, many questions are being asked, many promises being made by authorities, but 21 people have lost their lives. We'll continue to track this story for the moment. Slipping into a short break, on the other side, we'll get to the latest from West Bengal. Is Mamata Banerjee losing control of the Trinamool Congress?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
6: Really?
5: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program.
1: Let's get it.
5: Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू, फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
9: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
10: लेट्स डू इट, लेट्स डू, लेट्स स्टार्ट।
11: ब्रेकिंग स्टोरीज, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
12: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर। व्हाट इज इन योर लेटर? यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स।
13: 21 डेज इन कश्मीर, अनफिल्टर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स आई सॉ एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड।
14: वेरी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
15: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude,
16: we're standing on the Indian Navy's newest warship.
14: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
17: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: नहीं, हाँ उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये तो ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है, इसके नीचे से 7-8 पेशन निकाले। हाँ
1: तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे?
0: रूम बना हुआ उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले सारे।
2: 7 जने थे जो हमने निकाले,
3: मैं खुद ने तोड़वाया।
2: 7 जने हम लोगों ने
1: निकाला। देखिए ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना हो बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है,
2: एक ही रास्ता सर, वो बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है। तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा, फिर
0: जब घुसे हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से, मैंने खुद CPR दिया है। 3 पेशेंट को मैंने CPR देते देते शिफ्ट कराए।
1: जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप
0: नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे। कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे CPR दिया है।
1: एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे
0: बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, हाँ एक ही रास्ता है, और कोई नहीं। नहीं वो बीच में से ताला इसमें लगा होता बेसमेंट में जाने,
1: छत चक जाने के लिए उस पर ताला लगा हुआ
0: था। नहीं ताला कहीं नहीं था, ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे इसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये जो ये कटी हुई है कैन, देखिए
1: तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी।
0: हाँ बाहर से बढ़ सकते हैं, ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था, लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं, अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल थे, वो बाथरूम के अंदर जीने उस पर चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं।
1: आप देखिए आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी, चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है, और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर।
0: बाथरूम के अंदर से निकाले था,
2: वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था, वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा जब भी नहीं टूट रहा था।
0: सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं।
2: इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1, 2, 3, 4
4: हाँ वो टूटी नहीं, हमने रॉड मारी नहीं, टूट रहे थे ना सारे। वो
0: 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी, हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जाते
2: हमारे साथ थे।
5: So you heard all the eyewitnesses accounts and how they tried to rescue all the people who were trapped inside. But we also have some breaking news coming in. AK Malik, who's the chief Delhi fire officer, has spoken with NDTV and he's given out what were some of the major lapses that led to this inferno being out here in South Delhi's Malwa Nagar. The investigation conducted so far has revealed that the hotel did not possess a fire NOC. So this hotel right behind me did not have a fire no objection certificate. Apart from that, of course, there was only one entry and exit point which led to the fire spreading more rapidly here in the building, which led to suffocation, and that's why at least 21 people died. AK Malik goes on to say that the fire department had successfully evacuated 37 people, and earlier there were a lot of questions being raised as to why the fire brigade came late. He goes on to say that the fire brigade received the distress call at 8:50 a.m. Remember, the fire broke out at 8:30 a.m. and that the fire brigade were quick to reach the location as well. Now this building right behind that you're seeing is a 5-story building. AK Malik goes on to say that this 5-story building, the fire broke out from the basement and then it spread to other floors. Take a listen to what AK Malik exactly said on the rescue ops conducted so far.
6: सर ये जो घटना हुई उस पर एक इल्ज़ाम आप पे सीधे लग रहा है कि आप लोग 45 मिनट लेट पहुँचे, क्या है सच्चाई? और जबकि कहा जा रहा है कि स्टेशन जो है फायर डिपार्टमेंट का होटल से लगभग 3 मीटर की दूरी, 3 किलोमीटर लगभग लगता है उसमें।
7: देखिए कॉल हमें, जो मैं अभी टीवी देख रहा था तो उसमें एक लेडी ये भी क्लेम कर रही थी कि सुबह 8 बजे आग लगी है, लेकिन हमें जो कॉल मिली है वो 8:50 पर मिली है। 8:51 पर हमारी गाड़ियाँ टर्न आउट हो गई थी और गाड़ियाँ तुरंत ही मौके पर पहुँच गई थी। इसका आपको इससे पता लग जाएगा क्योंकि हमने जाते ही दोनों ऑपरेशन शुरू करे, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों करे,

0: और बेसमेंट में हमने जो है लोगों को सबसे जाते जाते ही सबसे 6 लोग हमने बेसमेंट से निकाले थे। उसके बाद हम आग बुझाते गए, अंदर एंट्री लेते गए और हमने लोगों को ऊपर वाली फ्लोर से भी निकाला। तो फायर ब्रिगेड की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है।
1: बिल्डिंग में सर नीचे क्या आखिर क्या सब होटल था, पूरा रेस्टोरेंट था क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर में?
0: देखिए बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है। उसके अंदर जो है जो हमें वहाँ मिला वो हर कमरे में खाना बनाने का सामान मौजूद था, साथ में ग्राउंड फ्लोर पे कुछ LPG के सिलेंडर्स वगैरह भी थे, तो किचन वगैरह लगता है उसमें चल रही थी कोई, और बेसमेंट में भी कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे। और बाद में जब हमें वहाँ पे मंत्री जी वहाँ पहुँचे मौके पर, तो तब हमें ये मालूम चला कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट के अंदर कोई लाइसेंस लेकर के उसको रन कर रहे थे। वहाँ लोगों ने हमें बताया कि इसमें जो मैक्स हॉस्पिटल में जो आते हैं मरीज, उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो यहाँ स्टे करते हैं, वो रुकते हैं उसमें।
1: कोई पीजी भी चल रहा था क्या उसके ऊपर? बताया जा रहा है कि यहाँ पे विदेशी नागरिक जो थे वो उसमें रहते थे।
0: नहीं, वो पीजी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन विदेशी नागरिक वहाँ ज़रूर थे। जो लोगों हमने निकाले हैं, जो हमने रेस्क्यू करे, उसमें फॉरनर्स भी थे, और ये मैक्सिमम वही लोग होंगे शायद जो फॉरनर्स, जिनके जो फ़ौरन से इलाज कराने के लिए जिनके मरीज़ यहाँ आए हुए होंगे, वो लोग रुके होंगे उसमें।
1: सर थोड़ा ब्रेकअप अगर बता पाएं, कितने लोगों ने आपने निकाले हैं टोटल, कितने उसमें डेड थे उस समय जब आप लोग लेके आए, और कितने का इलाज चल रहा है?
0: देखिए हमने टोटल 37 लोगों को रेस्क्यू किया है, इसमें से मैक्स हॉस्पिटल से भी डिटेल हमारे पास आई है। डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स हमने भेज दिए थे कैट के द्वारा, या जो PCR वहाँ अवेलेबल थी उनके द्वारा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल से हमारे पास जो डाटा आया है वो ये है कि 38 लोग वहाँ पर एडमिट हैं, उसमें से 20 इंजर्ड हैं और उसमें से 18 की डेथ हो चुकी है।
1: और हमने ट्रॉमा सेंटर गए, वहाँ पर भी 3 बॉडीज़ शिफ्ट की गई हैं, और ये भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस के भी 10 जवान उसमें झुलसे हैं आग में।
0: देखिए ट्रॉमा सेंटर की डिटेल मेरे पास नहीं है, दिल्ली पुलिस का भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे एक आदमी को भी इसमें इंजरी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए उनके हाथ में कट लगा है, उनको भी हमने ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था।
2: All right, NDTV has now accessed some more information on the lapses of this very flourish inn where I'm standing in front of. Number one, this building was constructed 6 to 7 years ago, and the building back then was only G+1, so did not require any permission back then. But remember, this building has 5 stories now. That's lapse number one. Apart from that, additional floors were then constructed without informing the authorities. This building only has permission for 5 rooms. It ended up making at least 20 to 25 as well. Later, the owner also applied for a trade license, and officials say that the complete building plan was not submitted. This building did not have any green light. This building does not even have a fire NOC as well, only one entry and exit point of this building. Apart from that, the owner was asked to provide the building plans to the building department, which was required to share them with the fire department. But the owner, Lokesh Bajaj, remember that's his name, and his partners are on the run. Lokesh did not provide any building plan to any department, and that's why the plan was not forwarded to the fire department later. Other lapse that NDTV has exclusively accessed is that the building was reportedly 15 meters in height, which makes fire safety clearance mandatory. This building right here was apparently above 15 meters, but required fire safety, but no NOC, no fire NOC on this as well. I'm going to go across to Tejshree, who's been tracking the story very closely. She's in this vicinity as well. Tejshree, we, of course, in the morning broke how there was one entry and exit point, but now major new lapses of this building at a time when the owner, Lokesh Bajaj, and his partners on the run.
3: Well, yes, absolutely. What we are given to understand as of now by the details that we have accessed, that this particular building, in fact, was earlier a G+1, and then they later started constructing the above floors of 2, 3 and 4 and 5 accordingly. But then while constructing the upper floors, they did not, in fact, give the building plan to the authorities, to the building planning department. And hence, while applying for the trade license, they were also asked for a proper documentation, for a proper NOC, and the owner, despite repeated efforts being made to reach out to them, they did not submit any kind of documents that were required. Any kind of NOC, in fact, was also not submitted, and hence the clearance to the building was not given. And in fact, we did speak to a number of residents over here. They also, in fact, stated that yes, absolutely, the building was just G+1 few years back, but then gradually the owner started building the upper floors as well. And here, in fact, when you build the floors, if the building is 15 meters, 15 plus meter, then you actually have to submit proper document, proper building plan, proper NOCs to be submitted.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
8: The line of control, Shivaroor, NDTV.

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
4: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
5: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
6: Happy meeting NDTV team here.
7: Thanks for NDTV.
8: Padmija Joshi.
9: Shriyashi Dev.
10: This is Shriya Ghosh.
11: Rakhandeep Chaudhary.
12: Manoj Yalowiwal.
13: Deepak Bopanav.
14: This is Vikte.
15: Tanushka Datta.
16: Sam Daniel.
17: Vika Ramaswamy.
18: Ritu Rajpurohit.
19: Shiv Arur.
0: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
20: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस सो आई रिवाइंड आई पॉज आई रिफ्लेक्ट आई डिग अंटिल व्हाट्स बेरिड स्टैंड्स अप टू बी काउंटेड ब्रेकिंग ग्राउंड नॉट जस्ट हेडलाइंस द मीनिंग बिहाइंड देम दिस इज ब्रेकिंग ग्राउंड विद मी वेदिका सूद
0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला
21: इसमें जनता का जीत है मोदी जी का जीत है
22: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल
0: हाउ विल यू सेलिब्रेट
21: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला
23: यू नो यू रिमेंबर यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल कम टू कबिनी एंड डू एन इंटरव्यू विद मी यू लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट
24: दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर स्टेट दैट टू द एंटायर कंट्री दैट आवर केरला इज सेक्युलर
25: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की
0: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
26: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
27: I think that Shiv was not the only incident.
28: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
2: So many attacks.
1: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
2: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
2: War struck country.
1: Hard questions.
2: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
4: France.
2: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
7: Illegal migrant, ye Bangladesh se ghuspatiya ke liye. ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
8: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
9: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
10: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
11: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
12: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left Democratic Front.
13: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
14: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
15: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा,
16: सबका राजा आग प्योर मसाला।
17: हाई रेट, चेक द ऑडियो, हाई रेट, चेक द ऑडियो।
18: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
19: बिग न्यूज़ दैट वी आर ब्रेकिंग फर्स्ट हियर ऑन एनडीटीवी।
12: वी नो फॉर श्योर दैट दे हैव यू नो कंफर्म देयर सपोर्ट टू हिम।
5: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर, द ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
13: They do not want to be part of an experiment.
8: Show around and then come to me at the Nehru Stadium in Chennai.
4: Unconditional support.
12: Child killer of TVK is here with us.
1: We've got Mr. Dinakaran with us here.
19: Veera, why aren't you also dancing?
12: Vijay is coming out, TVK chief.
19: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.

0: করব। যে যার এলাকায় শৃঙ্খল বন্ধন করে মূর্তিটাকে ঘিরে মাল্যদান করবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন, শপথ নেবেন, জীবন দিয়ে এই যুদ্ধ আমরা লড়াই করব এবং আমরা জিতব।
1: Now, essentially, here is what has happened. Today, the Speaker of the West Bengal Assembly accepted the 58 rebels as the real TMC and appointed their nominee, Ritabrata Banerjee, as the leader of opposition, which basically means that Didi now can't even have her nominee, Shovan Dev Chattopadhyay, as the LOP. If she continues with the party, it will at best be as a token titular head. In fact, the real TMC has already extended that generous offer to her. The question now is, could we see the impossible become possible, where in order to continue with the TMC, to continue to have the reins of power, Mamata Banerjee sidelines her own nephew, keeps the distance from Abhishek Banerjee, and continues with the real TMC?
2: We want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that.
3: Trinamool Congress আজকে বাজারে হাস্যের কৌতুক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তৃণমূল একটা বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, যে দল পরিষদীয় রীতিনীতি জানে না, কিভাবে তাদের দল নেতা অর্থাৎ পরিষদ দল নেতা করতে হয় সেখানে ব্যর্থ হয়েছে।
4: মমতা ব্যানার্জি আসলে তৃণমূল হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি জিসনে তৃণমূল কংগ্রেস কো জন্ম দিয়া, তৃণমূল কংগ্রেস কা মা জো হ্যায় ওহি আসলে তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়।
1: And which basically brings us to the biggest question today. What led to this complete decimation, this palace coup within the Trinamool Congress? How did Didi manage to lose her own party in a matter of just 28 years? From 1998 to 2026, the tables have been completely turned. From being a three-time chief minister, how does she find herself now out of party, out of power? Was it a rot within her own party, or is this the Maharashtra model being implemented that everyone is talking about? And more importantly, what does this mean for the larger opposition to the BJP when regional satraps are being rendered completely irrelevant? Are we actually going to see an opposition Mukt Bharat by 2029 at this rate?
5: Mamata Banerjee ji's khel mein bar bar कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और किए भी थे। वो एक ही खेला खेले जा रहे हैं, एक ही भी खेल जो खेलने में ममता बनर्जी माहिर थी। आज वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी वो खेल खेलने में उससे ज्यादा माहिर बनते उभर रहे हैं बंगाल में। ये एक नाथ शिंदे मॉडल बंगाल में अपनाए जा रहे हैं।
6: जो महाराष्ट्र में हुआ, कोई तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, कि उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना ये उनकी हॉबी है।
7: शिवसेना जैसा इतना पुराना पार्टी, हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने, परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज, इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ।
1: All right, and joining us on the show today, we have Jayanta Ghoshal, consulting editor, author, Professor Shayantan Ghosh. Political analyst Ashutosh Anand Dubey of the Shiv Sena UBT, ये भी भुक्त भोगी रहे हैं, which is why he's quite an expert now on this so-called Maharashtra model. Badal Debnath, political analyst, but my first question is to you, national spokesperson of the BJP, Dr. Ajay Alok, because everyone today is saying only one thing. जो आपने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ किया महाराष्ट्र में, अब आपने ममता बनर्जी के साथ किया है in West Bengal. Have you replicated the Shinde model in West Bengal? And at this rate, are you going to completely decimate all opposition?
8: I'm seeing quite sad face on the panel today. But trust me, believe me, friends, there is no hand of BJP in this. Adarsh Shakti bhi nahi hai.

0: अदृश्य हाथ भी नहीं है. मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर इज द सेम थिंग हैपेंड दैट आफ्टर 2014 हाउ कांग्रेस लॉस्ट एंड केप्ट ऑन लूजिंग बिकॉज ऑफ इनएप्ट लीडरशिप मोर देन 15 स्टेट्स एंड स्टिल लूजिंग both in votes, both in states, both at the national level, but still not ready to accept. The similar thing happened. Inept leadership in West Bengal, a dictator leadership. Here the matter is quite different. In Congress, the leadership is not that much, you know, it's not able to impose that much. Keeps on making some mockery and keeps them happy. So, but very soon, I was listening to a rhyme in the social media right now. 80 मिला 59 भागे नेता विपक्ष बदल गया माँ दलाडला बिगड़ गया 99 में से कितने भागेंगे तो एलओपी बदल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड देन अगेन पंजा यू से बीजेपी इज डूइंग इट. व्हाई वी विल डू इट? देयर इज नो नीड एट ऑल. वी आर 207 नाउ 208 प्रिसाइजली एब्सोल्युटली 2/3. नाउ इट्स फॉर दोज वन टू से हु कीप्स ऑन चैंटिंग ऑल द टाइम मोदी की सरकार गिर जाएगी एक साल में. मोदी को आई डिफीट दिल्ली विल फॉल दिल्ली विल फॉल कीप ऑन डे ड्रीमिंग ऑल द टाइम. हैलुसिनेशंस डू हैव मेडिसिंस एंड बाय द वे आई एम अ डॉक्टर आई थिंक दोस पीपल हैलुसिनेटिंग नाउ इवन दैट एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी. They should go and see some psychiatrist.
1: Okay, Ashutosh, two allegations against you. One, that you're looking very sad today.
0: Number we have increased.
1: And two, that people hallucinate. BJP is pleading innocence. हमने कुछ किया ही नहीं. हिंदी में कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा. कुछ इन्होंने किया नहीं. आपने फालतू में इनको शिंदे मॉडल बता दिया. They've done nothing.
2: नहीं, मैंने तो आलोक जी को सुना ही नहीं.
0: I never took name, Panja.
2: मैंने ऑफ कर दिया था. लेकिन मुझे मालूम था कि ये क्या कहेंगे. I knew exactly. बुक है, मुझे exactly पता था कि ये क्या बोलने वाले हैं. पूरी तरीके से मुझे मालूम था, इसलिए मैं हंस रहा था थोड़ा सा. देखिए, आलोक जी बड़े समझदार आदमी है, पार्टी को डिफेंड करना है तो जाहिर सी बात वो डिफेंड करेंगे. अब ये जो प्ले बुक है, ये प्ले बुक महाराष्ट्र से बहुत आगे निकल चुकी है. अब आपको जो है वो पूरी की पूरी ममता बनर्जी छोड़ दीजिए, सारे विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना.
1: आशुतोष जी, इंग्लिश, आवर ऑडियंस इन द साउथ लव्स लिसनिंग टू यू, सो इंग्लिश प्लीज. यस,
2: सॉरी. सो दिस इज अ वेरी डेंजरस प्लेबुक. दिस डेंजरस प्लेबुक स्टार्ट्स फ्रॉम 2014 व्हेन द स्लोगन वाज गिवन विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत. तो समबडी हु वाज टॉकिंग लाइक दिस now after losing almost losing battle in 2024 they have reached to the conclusion that this is how they have to win election and this is how we have to tackle and deal with the opposition. It's that simple. You ask anybody, any journalist, any enlightened person in Calcutta and they will exactly tell you how this split has taken place, how this split has taken place. How is it? This is not just a coincidence. When Rituprat Banerjee was holding a press conference announcing that 58 MLAs are with him and he has been elected as a leader of opposition, recognized with such a express speed by speaker, at the same time ED was reaching at Abhishek Banerjee's residence. This is not a coincidence.
1: But Ashutosh, Rituprata Banerjee was brought into the TMC by Mamata Banerjee herself. In fact, there were many people within the TMC who had opposed his entry. He used to be an MP of the CPM. He got caught in a scandal. He was expelled by the CPM. Mamata Banerjee brought him. Next, you will say even Mamata Banerjee, on the instructions of BJP, brought Rituprata Banerjee so that he could engineer this palace coup. Aap hi apne logo ko lekar ke aaye the. Now they have stabbed you in the back.
2: Exactly. That's what I'm saying. Who is Suvendu Adhikari? You know, Bangari Lakshman's career was over because he was caught on camera taking money. Dilip Judeu's career was over because he was caught on camera taking money. But that was a different era altogether. That time the BJP was talking about idealism, the moralism in the politics, and talking about ki hum chaal chali to chehre ki baat karte hain. Now all that is gone. The pure politics of power is important. Anybody and everybody. How Suvendu Adhikari joined the BJP? Because CBI was after him.
1: But CBI is not after Rituprata. What CBI case does he have? What CBI case do 58 other MLAs have? You know, this will be, because I'll be...

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
2: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज।
3: DK Shiv Kumar era begins in the state of Karnataka. DKS takes oath with 13 other ministers. Congress puts up big show of strength in Bengaluru.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: सबसे जाते ही सबसे 6 लोग हमने बेसमेंट से निकाले थे। उसके बाद हम आग बुझाते गए, अंदर एंट्री लेते गए और हमने लोगों को ऊपर वाली फ्लोर से भी निकाला। तो फायर ब्रिगेड की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है। इस बिल्डिंग को टोटली कम्प्लीटली सील्ड किया हुआ है, इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है, इवन विंडो तक भी इसकी जो है सील्ड है प्रॉपरली।
1: Around 40 guests were believed to be staying at the property when the fire broke out. Most of them asleep. The hotel, located in the narrow lanes of Hosrani near a major private hospital, was popular among foreign nationals visiting India for medical treatment. According to Delhi police, the building had only one entry and exit point despite housing dozens of guests.
2: अभी केस रजिस्टर करके आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है।
3: अभी तक प्राथमिक जांच में कौन दोषी पाया गया है?
2: जो बिल्डिंग का ओनर है उसकी जांच की जा रही है, उसको कुछ नहीं है।
1: Authorities are also probing compliance with fire safety norms and whether all required permissions were in place. Videos from the scene capture the desperation of those trapped inside. In dramatic visuals, two women were seen jumping from upper floors of the burning building in a bid to escape the flames. Local residents rushed to help, laying mattresses on the road below and assisting survivors as they landed. The visuals have become a stark reminder of the panic and chaos that unfolded within minutes.
4: The fire official on record has stated that why the fire got so massive because there was no window to escape for the people staying in this building and only one entry and exit.
5: Right, absolutely, Tejshree. But the million-dollar question is that there's perhaps only one entry and exit point here. We have the forensic team here. We have the police officials here, the NDRF here, trying to ascertain as to what led to that fire. But eyewitnesses here talking to us and telling us that at least 50 to 100 people were staying inside this hotel.
1: For families of the victims, the questions are painful and unavoidable. How was a facility licensed for 6 rooms allegedly operating 25? Were safety norms being enforced? And could lives have been saved had regulations been followed? As police prepares to act and multiple investigations gather pace, the focus is now firmly on accountability. Bureau Report, NDTV.
5: We've been reporting on this story since the fire broke out at 8:30 a.m. But we also spoke with some of the eyewitnesses who narrated how they tried to rescue people who were trapped inside that building behind me, the Flourish Inn building in South Delhi's Malviya Nagar. Remember, this building only has one entry and exit gate. So a lot of questions on A, the owner of the hotel who is right now on the run. And number two, also questions are being raised as to why did the fire brigade come late. The fire broke out at 8:30 a.m. but the fire brigade was at least 40 to 50 minutes late. And during that time period, a lot of locals here who were brave enough to rescue all the people, most of them foreign nationals who were trapped inside the building. Coming up next are some accounts of the eyewitnesses and how they saved some people who were trapped in the building. Take a listen.
6: ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारे?
7: नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया।
6: रास्ता कितने हैं अंदर?
7: एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से। हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये तो ये काटा गया, ये कटर से काटे गए, इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले।
6: अच्छा, हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे?
7: रूम बना हुआ, उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले सारे।
8: 7 जने थे जो हमने निकाले, मैं खुद ने तोड़वाया। 7 जने हम लोगों ने निकाले।
6: देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना, बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है,
8: एक ही रास्ता सर, बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है। तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा, फिर
7: अनकॉन्शियस जब घुसे हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से, मैंने खुद CPR दिया है। 3 पेशेंट को मैंने CPR देते देते शिफ्ट कराया।
6: तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप
7: नीचे गए फायर फाइटिंग टीम के साथ? नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे, कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है, मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे, तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे सीपीआर दिया है।
6: दो एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे
7: बढ़ेंगे बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, हाँ एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं नहीं वो बीच में से ताला इसमें लगा होता बेसमेंट में जाने,
6: छत छक जाने के लिए उस पर ताला
7: नहीं, ताला कहीं नहीं था। ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे इसके बाहर ताला लगा हुआ था, ये जो ये कटी हुई है कैन देखिए,
6: तो एक सीढ़ी थी केवल एक ही सीढ़ी,
7: हाँ बाहर से बढ़ सकते हैं ये अंदर, वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था, लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था, कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने दो पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ, वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल थे, वो बाथरूम के अंदर जीने उस पर चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं।
6: आप देखिए आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी, चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है, और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर,
7: बाथरूम के अंदर से निकाले
8: था, वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था, वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा जब भी नहीं टूट रहा था,
7: सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं,
8: इकट्ठे एक साथ घुसे थे, एक दो तीन चार,
6: हाँ वो टूट ही नहीं, रॉड वाली नहीं टूट रहे थे ना सारे, वो
7: दो या तीन पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी, हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे
8: हमारे साथ थे।
5: All right, we have some big breaking news coming in. The Delhi hotel owner Luvkesh Bajaj has now been nabbed. Sources telling us that the Delhi police officers are now questioning Luvkesh Bajaj and the partners. Remember, he was on the run after that incident broke out early this morning at 8:30 a.m. which killed 21 people. That's the image of Luvkesh Bajaj on your screens right now. He was on the run for a long time, and there was a circular issued against him as well. But now we are learning that the Delhi hotel owner Luvkesh has been arrested. Remember, there were major lapses in that in the Flourish Inn hotel which led to the death of 21 people. There was no fire NOC there. The building was 15 meters above its standing, which led to that there was not enough safety protocols there as well. And 13 hours later, the police officials have arrested Luvkesh Bajaj, the man behind that Flourish Inn hotel in South Delhi's Malviya Nagar. He also owns two other hotels in the same vicinity. One is named Green Residency and the third is also named Flourish Inn. Let's go across to Tejshree, who's also been

0: पहुंच गई थी। इसका आपको इससे पता लग जाएगा, क्योंकि हमने जाते ही दोनों ऑपरेशन शुरू करे, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों करे, और बेसमेंट में हमने जो है लोगों को सबसे 6 लोग हमने बेसमेंट से निकाले थे। उसके बाद हम आग बुझाते गए, अंदर एंट्री लेते गए और हमने लोगों को ऊपर वाली फ्लोर से भी निकाला। तो फायर ब्रिगेड की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है।
1: बिल्डिंग में सर नीचे क्या आखिर क्या सब होटल था, पूरा रेस्टोरेंट था क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर में?
0: देखिए, बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है। उसके अंदर जो है जो हमें वहाँ मिला, वो हर कमरे में खाना बनाने का सामान मौजूद था, साथ में ग्राउंड फ्लोर पे कुछ LPG के सिलेंडर्स वगैरह भी थे, तो किचन वगैरह लगता है उसमें चल रही थी कोई, और बेसमेंट में भी कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे। और बाद में जब हमें वहाँ पे मंत्री जी वहाँ पहुँचे मौके पर, तो तब हमें ये मालूम चला कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट के अंदर कोई लाइसेंस लेकर के उसको रन कर रहे थे। वहाँ लोगों ने हमें बताया कि इसमें जो मैक्स हॉस्पिटल में जो आते हैं मरीज, उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो यहाँ स्टे करते हैं, वो रुकते हैं उसमें।
1: कोई पीजी भी चल रहा था क्या उसके ऊपर? बताया जा रहा है कि यहाँ पे विदेशी नागरिक जो थे वो उसमें रहते थे।
0: नहीं, वो पीजी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन विदेशी नागरिक वहाँ ज़रूर थे। जो लोगों हमने निकाले हैं, जो हमने रेस्क्यू करे, उसमें फॉरनर्स भी थे, और ये मैक्सिमम वही लोग होंगे शायद जो फॉरनर्स, जिनके जो फ़ौरन से इलाज कराने के लिए जिनके मरीज़ यहाँ आए हुए होंगे, वो लोग रुके होंगे उसमें।
1: सर थोड़ा ब्रेकअप अगर बता पाएं, कितने लोगों ने आपने निकाले हैं टोटल, कितने उसमें डेड थे उस समय जब आप लोग लेके आए, और कितने का इलाज चल रहा है?
0: देखिए, हमने टोटल 37 लोगों को रेस्क्यू किया है। इसमें से मैक्स हॉस्पिटल से भी डिटेल हमारे पास आई है, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स हमने भेज दिए थे कैट के द्वारा, या जो PCR वहाँ अवेलेबल थी उनके द्वारा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल से हमारे पास जो डाटा आया है वो ये है कि 38 लोग वहाँ पर एडमिट हैं, उसमें से 20 इंजर्ड हैं और उसमें से 18 की डेथ हो चुकी है।
1: और हमने ट्रॉमा सेंटर गए, वहाँ पे भी 3 बॉडीज शिफ्ट की गई हैं, और ये भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस के भी 10 जवान उसमें झुलसे हैं आग में।
0: देखिए, ट्रॉमा सेंटर की डिटेल मेरे पास नहीं है, दिल्ली पुलिस का भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे एक आदमी को भी इसमें इंजरी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए उनके हाथ में कट लगा है, उनको भी हमने ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था।
2: And we're getting you breaking news. It's now been confirmed that Lufkesh Bajaj, the owner of the Flourish Inn hotel there in South Delhi's Malviya Nagar, has now been arrested by the Delhi police. This, of course, comes after he was on the run for more than 13 hours. Lufkesh Bajaj, along with his partners. But what we are learning right now is that he has been arrested by the Delhi police, and he is, as we speak, is being questioned by the Delhi police officers. That's the image of the owner of Flourish Inn, Lufkesh Bajaj, who has now been arrested after being on the run for almost 13 hours. He will have some pertinent questions to answer about the security and the safety lapses at the Flourish Inn, which led to the death of at least 21 people, 17 of them foreign nationals, and as we speak, at least 40 to 45 people, they are admitted in hospitals because of the grave burn injuries. Let's go across to Tejshree, who's been tracking the story very closely. Tejshree, after being on run for 13 hours, Lufkesh Bajaj now arrested by the Delhi police.
3: Well, absolutely. As we were talking, Resha, that now there will be a due procedure followed. Earlier, in fact, a couple of minutes back, while we were talking about it, the police in fact first detained him, and now he has been officially arrested. Now, in fact, his questioning will begin, and the investigation will in fact be unfolding around this entire matter as well. As you have rightly mentioned, that pertinent questions will be asked to him, say it be about how he flouted the norms. Not just about this particular hotel, also in fact remember, Raisha, that all the other properties also that he owns will now be under the scrutiny. That will also be monitored, so as to from where did he get all the documents of approval, and whether if he has the documents of approval or not, that will also be a part of investigation. Who was helping him, and how in fact was he able to build a building of G+5?
2: Right, Tejshree, because for the benefit of all our viewers, Lufkesh Bajaj just does not own Flourish Inn in South Delhi's Malviya Nagar. He has similar kind of 2 more inns. One is called Green Residency and the third is also called Flourish Inn. And he will have to answer some pertinent questions because Tejshree, he's clearly flouted all rules and regulations. There was no fire NOC. He cramped up 50 to 60 people. He made 20 to 25 rooms in a building which only had permission for 6 rooms.
3: Well, absolutely. And the bigger question over here is that while he was building such a tall construction or for this infrastructure, what were the authorities doing? And not just that, but yes, the permission was only for 6 rooms. That was G+1 at a point of time when he in fact submitted the documents. shots as well. And later after that, in fact, he started, building the upper floors as well. And perhaps that is why he ended up in building 25 rooms in which more than 40 individuals were staying. And you cannot imagine even the horrific conditions that they must have been facing, that they must have been gone through. And the eyewitness also, in fact, narrated the horrific ordeal so as to what they actually saw. And they saw actually people jumping from the windows because there was no emergency exit as well. There was no other way to step out from the building except that one entry or exit gate. We also saw that how narrow these lanes were. So not just one property, but all the property will now be under scanner that are owned by this Lokesh Bajaj.
2: Right, Aishra, absolutely. Thanks for sharing a very crucial update. And big news coming in, Lokesh Bajaj has now been arrested after being on the run for at least 13 hours. As we speak, he's being questioned by the Delhi police authorities on the major safety lapses at his hotel, Flourish Inn, in South Delhi's Malwa Nagar. On that note, we slip into a very short break. But come right back. Newsnight coming up next with me, Aishra Singh.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा।
3: Now, the Federation of Western India Sene Employees, or FWICE, has officially withdrawn its non-cooperation directive against Ranveer Singh.

0: not be improved yet. Number two, video he has already claimed in the court that it was morphed, which was given to us, and that court has also accepted. This you should know at least, Ashutosh. Now, how much you become naive? You just now said, I have spoken to a lot of journalists there. Nobody was ready to accept that yes, Mamata is going to lose. At the most, they were saying, no, it's going to be a tough fight, but in the end, she will prevail. You know why it happens? Because you talk to your ecosystem. You don't talk neutrally. The problem is in the hate of Modi, in the hate of BJP, your acumen of journalists, your journalist acumen disappear and you become absolutely biased. Now, let me tell you what happened in TMC. Volcanoes are never ignited. Hmm. They are not time bombs. Volcano naturally erupts. And that's what happened in TMC, that the TMC 15 years volcano erupted, and especially after 2014, when Abhishek
1: was... Okay, very quickly, Ashutosh, you respond, then I really must bring in Professor Ghosh as well as Madhav Devnani.
0: Yes. No, this has a side effect. See. This has an after effect. And let me complete, just one line.
1: Hmm.
0: This eruption of volcano in TMC will have a cascading effect in all the dynastic rule parties. Mark my words. Other volcanoes are waiting to erupt. And people like Ashutosh will again keep on hallucinating.
1: Okay, volcanoes waiting to erupt, Ashutosh.
2: No. I'll welcome those kind of volcanoes, because I want India to be still a democracy. If such volcano will erupt, people will on the road and they will... What happened in our surrounding area, in the neighborhood. See, if people like Ajay Alok is saying that Subhendu Adhikari caught on camera.
0: What a wishful thinking.
2: Frankly speaking, I have nothing to add on this.
0: Pathetic.
2: I will keep my mouth shut. If somebody could be so blind and can concoct a story on a live television in the national channel, I have nothing to add.
0: Go and see the Calcutta High Court.
2: I have seen Bangaru Lakshman's career ruined. I have seen Dilip Jude's career ruined. But I have seen somebody becoming the chief minister, and the BJP has taken the whole population of Bengal for granted. That look what we do.
0: You haven't seen Rahul Gandhi Sonia Gandhi.
1: Sir, you are seeing Bangaru Lakshman, but you cannot see Dipankar Bhattacharya had 2.5 crore rupees worth of cash being found in his jute field. It was buried in a jute field. And these are locals who are reporting it.
2: Padmaja, I am only saying is, somebody, jo log hamam mein nange hote, unhe dusro par ungli uthane ka adhikar nahi hai. BJP...
1: Sir, ungli to log utha rahe hain ab. Ungli nahi, haath utha rahe hain. Ab log respond kar rahe hain, which is why these legislators are scared.
2: I'm sorry, Padmaja, I will not be, because if BJP has no right to talk about corruption.
1: But this is not even the BJP. These are people within the Trinamool Congress who are saying, do you know what Akhur Zaman today said? He said that the TMC has become a joke. You have Ritabrita Banerjee saying that there is no legislative business being done in our party.
2: I'm only saying everybody on earth has a right to talk about corruption, but not the BJP after Bengal election.
1: And do the people of Bengal have the right to talk about corruption? Because yes. It's people of Bengal who are now calling MPs and MLAs of the Trinamool Congress chor chor. These are people on the streets.
2: But not BJP.
1: Okay, BJP will not.
2: Not BJP after Bengal.
1: Okay, let me ask Professor Shayantan Ghosh then. Not the BJP, let me ask Professor Shayantan Ghosh.
0: Ashutosh is under hallucination.
1: Okay, what is the reason, Professor Shayantan Ghosh? We will not listen to the BJP, Ashutosh ji has said. We will not listen to the BJP, but let's listen to Professor Shayantan Ghosh. What is the reason? Is this engineered by the BJP, or is this people's anger as a result of which now TMC MLAs are thinking they are better off without Abhishek Banerjee?
3: Okay, so I will not be able to give you just one-liner that I believe that nothing happens for one reason. Everything happens in politics for different reasons. And here also, there is not one reason. There are different reasons. As far as Abhishek Banerjee's the anger within the Trinamool Congress against Abhishek Banerjee's concern, I will tell that this is not the first time when the rebellion is happening in the TMC. It has been happening from the time of Mukul Roy. Exactly. When he led the party and joined the BJP, the target was Abhishek Banerjee. He raised questions against Abhishek Banerjee. Later, Shubhendu Adhikari and other people. Of course, so this anger was there. I will just tell you a few things. That Trinamool Congress, from the time of its inception, the Congress leaders who came together, they have fought their life against the left. there was no ideology as such, but there was one goal, one target, that is fight against the left, defeat the left. When the left was defeated in 2011, when Mamata Banerjee came to power, people stuck there together after 2016 onwards, mostly because there was power, because there was protection from the party. They were giving protection, and by this, and we have discussed this, a corporatized structure came out under Abhishek Banerjee, which distanced people. There are angst within the people, which we are witnessing now. So all these factors are there. I believe that the mass communication or the mass connection of the Trinamool Congress, which is of Mamata Banerjee, was decreasing with time. But like 2021 onwards, it was happening. Maybe we have ignored it, but it was very much there. But the issue today is that this rebellion, I will also say, who is the beneficiary of this rebellion? Mm. Of course, not the Mamata Banerjee. The beneficiary of this rebellion is the ruling political party. But I will also say, this is not Maharashtra model. This is Bengal model. And Bengal model is an opposition dear to the ruling party.
1: That All right. This is a very exclusive Bengal model. And like they say, इन उर्दू बादल देवनाथ हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था हमारी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था अपने ही ने लूट के ले गए आपकी पार्टी ही लूट के ले गए 58+2 60 एंड इन फैक्ट द बिग न्यूज इज दैट नाउ हुमायूं कबीर इज सेइंग 20 एमपीज आर वेटिंग टू ब्रेक अवे नेक्स्ट यू हैव गिवन द बंगाल मॉडल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री बादल देवनाथ
4: कहां आपका डिबेट था और कहां आप लेके गए इस पूरा डिबेट में आपका मतलब क्या है मैं तो समझ नहीं पाया अभी तक समझ में नहीं पाया
1: अरे आपसे सीधा सवाल पूछ लेती हूँ ना सर क्या है आपको सब समझ में आ जाएगा सीधा सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपका मिस गवर्नेंस की वजह से पार्टी टूट गई क्या ये है सवाल
4: पूरा डिबेट उल्टा हो गया है आपका आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं मैं जो बोल रहा
1: हूं अरे सर मेरा डिबेट मुझे पता है ना आपको उल्टा लग रहा होगा आप मेरे डिबेट की एनालिसिस मत कीजिए अपनी पार्टी की एनालिसिस कीजिए क्या वजह से आपकी पार्टी टूट गई पार्टी आपकी उल्टी हो गई आप मेरे डिबेट का एनालिसिस कर रहे हैं
0: अरे ये
4: मैडम
0: ये कौन सी टीएमसी में है
4: मैं आपके साथ हूं
0: टीएमसी डज यू बिलोंग्स टू फर्स्ट आस्क हिम
1: ऐसा मत कहिए बादल जी आजकल बहुत डेंजरस है बीजेपी को कहना मैं आपके साथ हूं कल आपको एमिनेंट पर्सनालिटी बना देंगे
4: औरंगजेब के साथ नहीं मैं आपके साथ हूं लेकिन औरंगजेब के साथ नहीं मैडम मैं आंसर दे दूं ममता बनर्जी अभी भी फाउंडर ऑफ तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड चेयरपर्सन टुडे आज भी लेकिन मुझे भी जो पता चला इस खेल में दिल्ली से एक भाजपा के लीडर और असम के एक भाजपा के लीडर महाराष्ट्र मॉडल कर्नाटक मॉडल तमिल मॉडल केरला मॉडल क्या क्या मॉडल है सब मॉडल लगा दिया लेकिन रिदर्वत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया हमारा लीडर है ममता बनर्जी मेरे ऊपर हमारा कमिटी के ऊपर रहे तो अच्छा होगा और हम सब ममता बनर्जी के साथ है लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है मतलब डायरेक्ट कह दिया दूसरा बात है आपका काटवाने का जो सवाल आपने जो अभी जो दिखाया ना काटपानी रिफंड कर रहा है मैं मैडम आपको बोल रहा हूं शुभेंदु अधिकारी जो वीडियो आपने दिखाया वो बात छोड़ दिया मैंने वो पुराना हो गया वीडियो मोदी जी ने भी ये दिखा दिया कैसे कैसे पैसा ले रहता है भोला भला इंसान है छोड़ दिया मैडम लेकिन 2013 से 2024 तक शुभेंदु अधिकारी का 4 PA का जो हत्या हुआ था लास्ट में चंद्रनाथ रथ का इसका कोई आंसर
1: अरे बादल जी आपकी पार्टी क्यों टूटी है ये बता दीजिए ना आप अपना वजह दे दीजिए
4: मैडम आपको अच्छा नहीं लगा
1: आपके 80 आपके 60 एमएलए क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप वजह बताइए ना
4: मैडम हत्या का बात कर रहा हूँ हत्या का बात
1: वो शुभेंदु के पीए की हत्या की वजह से तो नहीं जा रहे हैं ना वो क्यों जा रहे हैं
4: मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 2 दिन पहले उनका जो करीबी है जो नंबर 1 जो पीए था बार बार जो 4 PA था चार पीए को हत्या हो गई, चंद्रनाथ को गोली मार के मार दिया
1: गया। बादल जी आपको मैं एक सीधा सवाल ये पूछ लेती हूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वॉज सेड दैट द मोस्ट फेथफुल वोट बैंक ऑफ द तृणमूल कांग्रेस वुड बी द मुस्लिम्स, डू यू नो दैट in the last election out of 85 seats which were muslim dominated which had more than 30% muslim population the tmc had won 75 of those seats this time around out of their 80 34 mlas were muslims now what has happened after that 17 out of those 34 mlas have deserted didi and they have gone over to the other side rebel javed khan has been with the tmc since 1998 so you've got somebody who was there at the inception of the tmc Biggest names from Mada Murshidabad are the ones who have moved away. These are the names who have defected. Sabina Yasmin, she used to be in the Congress. She was the first woman minister of the TMC government. She has won this time from Sujapur, which is in Malda. She has defected. Hariharpada MLA, Niyamat Sheikh, key TMC organizer in Murshidabad, is a district president of the TMC. He has gone over to the other side. Then you've got a whole spate of these MLAs. Who are key faces for the TMC in Murshidabad? Imani Biswas, Akhur Zaman, Noor Alam. What is the reason that the one group of people who would have been thought to be most faithful to the Trinamool Congress are now moving away? Are you actually suggesting, Badal Debnath, that Muslim MLAs are deserting the TMC on the nudging of the BJP?
4: Madam, jitna bhi aap ghuma sakte, ghuma lijiye. Lekin main sawal se aur answer se bhagunga nahi. ये जो जितना नंबर ऑफ एमएलए का आपने बताया ये सब टीएमसी से है, ये सब मान लिया ममता बनर्जी हमारा लीडर है, कोई टीएमसी से भागा नहीं, कोई दूसरा टीएमसी नहीं बन रहा है।
1: अरे लेकिन खुद का टीएमसी बनाया है, वो कह रहे हैं
4: मैडम बोलने क्यों दे रहे हैं, मैडम
1: को नहीं मानेंगे, उनका अलग टीएमसी बन गया। बादल जी आप कहां पे बैठे हैं?
4: मैं आपका दुश्मन हूँ, बोलने दीजिए मैडम, मैं तो दुश्मन नहीं मानता हूँ, आप दुश्मन समझते हर बात में आप टोकते है। मैडम जो कह रहा हूं कोई कोई अलग नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ा बात है आज जो विधानसभा में जो हुआ, स्पीकर ने क्या किया देखिए, जो व्यक्ति को ममता बनर्जी पार्टी से सस्पेंड किया, मान लीजिए सस्पेंड किया, और उन्होंने 60-100 विधायक लेके सिग्नेचर करके दिया हमारे साथ इतना विधायक है, वो उसी पार्टी का जो ममता बनर्जी का लीडर मान रहा है, बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसको एलओपी बना सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है।
1: अरे सर बटुआ आपके एलओपी को नहीं मान रहे हैं, ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर रही थी उनको बोल रहे हैं कि आप हमारी ऑनररी एडवाइजर बन जाइए, सीएम से एडवाइजर बना दिया है उनको, आप अभी भी यू इन डिनायल।
4: यस यस मैडम, यस मैडम, मैं और बोल रहा हूँ जो जो मुख्यमंत्री बन रहे दो दिन के बाद शपथ ले रहे हैं 9 तारीख को, उसके 2 दिन पहले उनका पीए को जो हत्या हुआ। और एक लास्ट सेकंड मैडम, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप एक दिखा दीजिए जो 5-6 साल पे का कोई तृणमूल था का भाजपा में गया, कोई कांग्रेस पे था भाजपा में गया, कोई आरजेडी में था भाजपा में गया, और भाजपा में कोई लीडर नहीं है जो 5-6 साल, एक अनंत विश्वम 10 साल भाजपा में आया, ये सब मुख्यमंत्री बना, लेकिन 25-30 साल से जो संघ परिवार भाजपा का रहे उन्होंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैन नहीं है जो भाजपा यहाँ पर इस नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, बिहार हो, आसाम हो और बंगाल हो मुख्यमंत्री बना सकते, तो इनके पास जिसका लीडर नहीं है वर्कर्स नहीं है, ये लोग टीवी पे बैठे बैठे।
1: आपने अभी भी ये नहीं बताया कि भाई आपकी पार्टी टूटी क्यों, इज देयर अ प्रॉब्लम विद इन योर ओन पार्टी बिकॉज ऑफ व्हिच योर एमएलएस हैव ब्रोकन अवे, आर यू गोइंग टू स्टिल लिव इन डिनायल एंड से दैट आवर पार्टी इज इंटैक्ट, वी हैव गॉट नो प्रॉब्लम विद इन द पार्टी। लेट मी ब्रिंग इट आनंद दुबे ऑल्सो, बीन वेटिंग वेरी वेरी पेशेंटली। आनंद जी थैंक यू वेरी मच, आप इतने पेशेंटली वेट कर रहे हैं। जब आप देखते हैं जो कुछ यहाँ पर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल है या इनका अपना अलग सर दर्द है?
5: पद्मजा जी नमस्ते, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू कि आई अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल बट आई कांट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश बिकॉज आई वाज इन हिंदी मीडियम स्कूल, सो मैं अब हिंदी में बात करूंगा। पद्मजा जी
1: आपने टोपी बड़ी अच्छी है, ये उत्तराखंडी टोपी है क्या, ये उत्तराखंडी टोपी लग रही है?
5: या जी जी जी जी, मैं वहीं से अभी जस्ट मुंबई पहुंचा हूँ, आई वॉज इन ऋषिकेश।
1: Very nice. It looks lovely. Please go on.
5: आपने शुरुआत में एक शब्द का प्रयोग किया कि दुबे जी की पार्टी भी भुक्त भोगी है। जी बिल्कुल भुक्त भोगी है, बट भुक्त भोगी है, रोगी नहीं है। We are not ill. We are not sick. We are fighter. We are tiger. BJP आपको तोड़ती है, आपको कमजोर करती है, नुकसान पहुंचाती है, महाराष्ट्र मॉडल करती है, वहां पर उनको सरकार गिरानी थी.

0: थी, उनको पार्टी तोड़नी थी, उन्होंने दो बड़ी पार्टियों को तोड़ा, कोई बात नहीं। पश्चिम बंगाल में हम समझते हैं कि ये स्थिति नहीं है, वहाँ तो उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। उनकी लड़ाई आज की नहीं है पद्मजा जी, 2029 की तैयारी है, ये 2026 की लड़ाई है ही नहीं। पूरे विपक्ष को अब इससे एक चीज़ सीखना होगा, मैं एक सेकंड में बताऊंगा। महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो कौरव पांडव के बीच में जब सहमति बनी तो ये बात हुई कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हमला आक्रमण नहीं होगा, निहत्थे पर आक्रमण नहीं होगा, एक नियम कानून बने। लेकिन अभिमन्यु की हत्या के बाद माधव ने कहा कि अब कोई नियम कानून नहीं होंगे। उसी प्रकार अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को नियम कानून से परे जाना होगा। ये रोने गाने से, परेशानी दिखाने से, मुंह बनाने से बीजेपी कमजोर होने वाली नहीं है। साम दाम दंड भेद जिस परिस्थिति में, अरे कब तक रोगे ईडी सीबीआई फलाने ढमका, कब तक? बीजेपी जिस फॉर्मेट में राजनीति कर रही है, या तो उस फॉर्मेट में करो या तो आत्मसमर्पण करो, विषय समाप्त। कब तक, कब तक दबके सहके रोके नहीं होगा पद्मजा जी,
1: बता दीजिए अजय आलोक। दिस इज अ बैटल क्राई बाय आनंद दुबे टुडे। आज उन्होंने गांडी उठा ही लिया। हाँ। उन्होंने कहा आपने अभिमन्यु वध किया है, आप साम दाम दंड भेद, नाउ इट विल बी वॉर।
2: Actually, if you see the similarity, today, by the way, Anand ji, you are looking cute. Anand ji, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर आप पहाड़ी लग रहे हो, अच्छा है, थोड़ा सा भगवा भी पहने हुए हो, हरा नहीं पहना है आपने,
0: धन्यवाद।
2: बाकी उद्धव ठाकरे तो हरा हरा हरा हरे हरे हो गए हैं बिल्कुल। There was a similarity in Uddhav Thackeray case and in the case of TMC, only one similarity. The Nepo kid here also in Uddhav Thackeray clan was being promoted, and that led to desertion of Eknath Shinde, and now he is the real Shiv Sena. The same thing happened in TMC. The Nepo kid was being promoted, was being fostered, which was not taken lightly by Mr. Mukul Roy or for that matter Subhendu Adhikari or many of the leaders. Here the problem is, in Maharashtra, the ruling dispensation was kicked out. Here in West Bengal, the principal opposition party leader has been shown the door by their leaders only. That means what? That means absolute decimation of the leadership. And by the way, you were telling about the speaker. Ye Badal Devji speaker bol rahe the. Abhishek Banerjee was charged and there was a case lodged because he forged the signature of MLAs. And he's evading CID right now. Now this another leader, he went to the speaker along with the signature of 59 legitimate MLAs, so he was made LOP.
1: Anand Dubey.
2: Now what next?
1: People Somebody speaking up against nepotism. They're saying the only commonality is not the Maha model, it is the nepotism.
2: Maybe next 10 days.
0: No.
1: Anand Dubey.
0: No.
2: Absolutely nepotism.
0: Padmaja ji, we will not cry. Factor. We will what not cry like BJP, like TMC. In 2000... Please listen me, my dear friend.
2: Oh, TMC is crying.
0: You said me that I am looking very cute. So give me some time. Give me some time. Padmaja ji, vishay ye hai ki 2022 mein, 2022 mein, nayi party, naya chinh leke bhi hum 9 sansad, हम 20 विधायक, हम 65 नगर सेवक लाए हैं इस बुरी परिस्थिति में भी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी से लड़ा जा सकता है, थोड़ी बहुत कम ताकत जरूर हुई है लेकिन लड़ सकते हैं।
1: नजर मत लगाइए, ऐसा कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे उनको भी पोच करने के चक्कर में
0: बीजेपी डराती है,
1: हर तीसरे दिन एक मुंबई के अखबार में छप जाता है। आप नजर मत लगा दीजिए आनंद।
0: मैं वही कह रहा हूं नो, मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी अगर ये मॉडल्स लाएगी देश में तो कब तक रोएंगे, कब तक डरेंगे? नहीं। और रही बात, अभी नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, अरे भैया जहां जहां आपकी सरकारें बनी है उनकी लिस्ट उठा के तो देखो, जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं भरी पड़ी हैं लिस्टें, ये अलग बात है कि आपके यहाँ लोकतंत्र का एक दिखावा आप करते हैं, ठीक है, नितिन नबीन साहब हमारे भी अच्छे बड़े भाई जैसे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या है कैसे है अजय भाई ये आप भी जानते हैं, तो लड़ाई अब उसकी नहीं है, आप जिसको तोड़ना चाहते हैं तोड़ते हैं, आपने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी, जब आपको लगा फायदा है तो जोड़ी, तो जोड़ तोड़ दोनों आपके पास है, आप सहूलियत के हिसाब से खेलते हैं, अगर विपक्ष आपके स्टाइल में खेले तो आपको हराना बड़ा आसान है।
1: अजय आलोक,
0: आप क्या है, 10 साल 15 साल पहले आप थे ही नहीं, आप एक बार तो 5-6 साल के लिए देश में थे, फिर आप 10 साल से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जड़ें बहुत गहरी हैं, आपकी जड़ें गहरी नहीं है, आपके पास दाव पेच गहरा है, उस दाव पेच को अगर कोई कमजोर कर सकता है तो देखिए कर्नाटका में आ गए।
1: ओके, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अजय आलोक, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, नाउ इट इज अ वीकेंड दीदी हु इज बीइंग किक्ड इन द टीथ बाय हर ओन पीपल, कल आप भी हो सकते हैं अजय आलोक।
2: वेल, we are a party which is driven by the ideology and the ideology comes from 1925 onwards 101 saal purani vichardhara ko leke hum chale ek baar puri party jansangh khatam kar di 1980 mein bhartiya janata party banayi wapas khada kiya 84 pe do seat mein the ek jagah bhi satta nahi thi hamara graph aise aise aise aise badhta gaya pehli baar satta mein 1990 mein aaye coalition government mein graph aise hi badhta gaya coalition sarkar chalai Atal Bihari Vajpayee ke netritv mein अपने आइडियाज अपने को दूर रखा जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी क्योंकि राजनीति भी करनी है बट वी मेंटेन्ड आर आइडियोलॉजी एंड टुडे वी आर द आइडियोलॉजी द कंट्री इज मूविंग विद आर आइडियोलॉजी एंड दैट्स व्हाई वी आर इन पावर फॉर कंसेक्यूटिवली थ्री टर्म्स एंड बाय द वे आशुतोष वाज टेलिंग दैट व्हेन दे नियरली लॉस्ट इन 2024 वी लॉस्ट आफ्टर 1984 टेल मी वन पार्टी हु हैज गॉट 240 सीट्स टिल नाउ एंड यू से वी आर लॉस्ट That's why I say you keep on hallucinating all the time.
1: And you know, I want to add that point again. You kept saying that this is the BJP model. What do you make of Muslim MLAs also defecting away from Didi and going into the rebel camp? 17 of them out of the total 34 they have so far. Surely they won't have any love loss for the BJP. I think you've muted yourself, sir. Ashutosh, you've muted yourself.
3: See, let me tell you. Let's keep Muslims away. Because... Then I have to talk about other things also. Let's keep that away.
1: No, but the reason this is important is if we are talking about this as a BJP operation, surely Akhur Zaman is not going to be swayed by the BJP. Sabina Yasmin won't be swayed by the BJP. You won't have a three-time MLA like Javed Khan being swayed by the BJP. Somebody who's been with Mamata Banerjee since 1998. What is the BJP angle here?
3: Padmaja, I have faced, when I was in politics, I faced... 4-5 cases, half a dozen cases, police. So I know how it works. So it works both ways.
1: But sir, 58 MLAs cannot be having cases against them. You've got first-time MLAs who have literally entered politics 5 years ago, who were councillors. Unke cases nahi hai. You're saying paisa nikal raha hai, that is not an issue.
3: Cases
1: you know, old aides are defecting, that is not an issue. There must be some problem within the TMC.
3: Padmaja, I said in my initial statement, if you look at the video.
1: One at a time, Ashutosh, yes.
3: In my initial statement, I did say that there was an anger against Abhishek Banerjee, but that's not the primary reason. If the kind of the way agencies are working today, any MLA, any MP, if we get a call from ED, from police, something like this, I can tell you that person will break. It's not easy. Let's face it. We are working in a different ecosystem altogether. And Ajay Alok, he was talking about ideology. Ajay Alok himself was in Janata Dal United. From Janata Dal United, he came into the BJP. Because he looks at some green posture in BJP. So everybody wants to move to the green posture. Nobody wants to go to jail. Nobody wants to face police and ED and other things. There are very few people who can face.
1: So you're saying these 80 people are, these 60 people are going to go to the BJP?
3: Abho, Shiv Sena ke kitne log toote the?
2: Actually, Ashutosh doesn't know my
3: Sena ko kitne log toote the?
1: Arre sir, but Shiv Sena ki tarah yahan pe number nahi chahiye na. The numbers are here clearly in favor of the BJP. 208 hai unke paas, 158 they need. They have 50 extra. Why do they need these MLAs from the Trinamool?
2: हेलुसिनेशन,
3: अब बीजेपी को सरकार भी अपनी चाहिए, विपक्ष भी अपना चाहिए.
2: हेलुसिनेशन
3: नो नो नो नो, इट्स नॉट हेलुसिनेशन अजय जी. आपको और बीजेपी को प्रॉब्लम ओसीडी है मेरे नाम को लेके.
2: पक्का हेलुसिनेशन है.
3: उसको
2: हमें क्यों चाहिए भाई ये, जस्ट टेल मी, हमें क्यों चाहिए?
3: नहीं नहीं नहीं,
2: मुझे बस ये समझा दीजिए हमें क्यों चाहिए.
3: क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगली बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में 42 की 42,
2: अगर हम

0: Hello and welcome. You're watching Left, Right and Center with me, Raisha Sehgal. We're getting you this show from Ground Zero. I'm right here in South Delhi's Malve Nagar, where that deadly inferno broke out early this morning at 8:30 a.m. What happened after that? There were at least 21 people who died in the inferno, which broke out at 8:30 a.m., out of which 40 people, as we speak, are right now admitted in the hospital. The authorities have come out and have said that there will be action taken against the hotel owner, Lokesh Bajaj, and partners, who is on the run as we speak. We also heard the Delhi Chief Minister saying that action will be taken, but major questions arises. Number one, who is supposed to be held accountable? Because this building, which is a little further away from me, is right here in South Delhi's Malve Nagar. It had only permission for a five-room building, but it ended up having at least 20 to 25 rooms. 50 to 60 people were living in this building. It's called the Flourish Inn in South Delhi's Malve Nagar. Lot of security lapses, safety lapses. Out of 21 people who are dead, at least 17 are foreign nationals who came to India for cheap, affordable medical treatment. But who takes the onus? Our next report telling you more.
1: It's a tragedy that has become all too familiar. Every major fire disaster uncovers the same story. Alleged negligence, violations of safety norms, and a lack of enforcement. And once again, innocent lives have paid the price. It's what happened at Mikasa Inn in bed and breakfast facility in South Delhi's Hosrani. As investigators piece together what went wrong, disturbing details are emerging. Sources say the property was licensed under the Delhi government's bed and breakfast scheme, which permits a maximum of 6 guest rooms. But allegedly nearly 25 rooms were operational, more than 4 times the permitted capacity. Some of those rooms were reportedly located in the basement as well. The overcrowding may have turned the building into a death trap.
2: बेसमेंट में हमने जो है लोगों को सबसे जाते ही सबसे 6 लोग हमने बेसमेंट से निकाले थे. उसके बाद हम आग बुझाते गए, अंदर एंट्री लेते गए और हमने लोगों को ऊपर वाली फ्लोर से भी निकाला. तो फायर ब्रिगेड की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है. इस बिल्डिंग को टोटली कम्प्लीटली सील्ड किया हुआ है. इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है. इवन विंडो तक भी इसकी जो है सील्ड है प्रॉपरली.
1: अराउंड 40 गेस्ट्स वर बिलीव्ड टू बी स्टेइंग एट द प्रॉपर्टी व्हेन द फायर ब्रोक आउट. मोस्ट ऑफ देम अस्लीप. The hotel, located in the narrow lanes of Hosrani near a major private hospital, was popular among foreign nationals visiting India for medical treatment. According to Delhi police, the building had only one entry and exit point despite housing dozens of guests. Authorities are also probing compliance with fire safety norms and whether all required permissions were in place. Videos from the scene capture the desperation of those trapped inside. In dramatic visuals, two women were seen jumping from upper floors of the burning building in a bid to escape the flames. Local residents rushed to help, laying mattresses on the road below and assisting survivors as they landed. The visuals have become a stark reminder of the panic and chaos that unfolded within minutes.
3: The fire official on record has stated that why the fire got so massive, because there was no window to escape for the people staying in this building and only one entry and exit.
0: Right, absolutely, Tejshree. But the million-dollar question is that there's perhaps only one entry and exit point here. We have the forensic team here. We have the police officials here, the NDRF here, trying to ascertain as to what led to that fire. But eyewitnesses here talking to us and telling us that at least 50 to 100 people were staying inside this hotel.
1: For families of the victims, the questions are painful and unavoidable. How was a facility licensed for 6 rooms allegedly operating 25? Were safety norms being enforced? And could lives have been saved had regulations been followed? As police prepares to act and multiple investigations gather pace, the focus is now firmly on accountability. Bureau Report, NDTV.
0: We we've been reporting on this story since the fire broke out at 8:30 a.m. But we also spoke with some of the eyewitnesses who narrated how they tried to rescue people who were trapped inside that building behind me, the Flourish Inn building in South Delhi's Malviya Nagar. Remember, this building only has one entry and exit gate. So a lot of questions on the owner of the hotel, who is right now on the run. And number two, also questions are being raised as to why did the fire brigade come late. The fire broke out at 8:30 a.m., but the fire brigade was at least 40 to 50 minutes late. And during that time period, a lot of locals here who were brave enough to rescue all the people, most of them foreign nationals who were trapped inside the building. Coming up next are some accounts of the eyewitnesses and how they saved some people who were trapped in the building. Take a listen.
4: ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से. अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारे?
5: नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया.
4: रास्ता कितने हैं अंदर?
5: एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से. हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता. ये तो चैन लॉक थी, ये तो ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है. इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले.
4: अच्छा, हाँ. तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे?
5: रूम बना हुआ, उसमें थे पेशेंट. अनकॉन्शियस निकाले सारे.
6: 7 जने थे जो हमने निकाले. मैं खुद ने तोड़वाया. 7 जने हम लोगों ने निकाले.
4: देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं, बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है. 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखा रहा हूँ, बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया. तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है.
6: एक ही रास्ता था, बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है. तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा. फिर
5: अनकॉन्शियस जब घुसे हम, अनकॉन्शियस निकाले. मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से. मैंने खुद CPR दिया है, 3 पेशेंट को मैंने CPR देते देते शिफ्ट कराया.
4: तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप
5: नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे. कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है. मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे. तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे CPR दिया है.
4: दो, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे. एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे
5: बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए. हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं. वो बीच में से ताला इसमें लगा होता, बेसमेंट में जाने,
4: छत चक जाने के लिए उस पर ताला
5: नहीं, ताला कहीं नहीं था. ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे, इसके बाहर ताला लगा हुआ था. ये जो ये कटी हुई है कैन, देखिए,
4: एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी.
5: हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं. ये अंदर वहाँ पे, वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था. लोग जीने पे पड़े हुए हैं. एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था. कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं. अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ. वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल थे. वो बाथरूम के अंदर जीने उस पर चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं.
4: आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी, चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है. और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर.
5: बाथरूम के अंदर से निकाले था.
6: वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, ग्लास जो है वो टूट ही नहीं रहा था. वो टूट ही नहीं रहा था. वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था.
5: सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में, टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं.
6: इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1, 2, 3, 4.
4: हाँ, वो टूट ही नहीं, रॉड वाली नहीं टूट रहे थे ना सारे. वो
5: 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी उनकी भी सांसें फूल गई थी. हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे
6: हमारे साथ थे.
0: All right, we have some big breaking news coming in. The Delhi hotel owner, Luvkesh Bajaj, has now been nabbed. Sources telling us that the Delhi police officers are now questioning Luvkesh Bajaj and the partners. Remember, he was on the run after that incident broke out early this morning at 8:30 a.m., which killed 21 people. That's the image of Luvkesh Bajaj on your screens right now. He was on the run for a long time, and there was a circular issued against him as well. But now we are learning that the Delhi hotel owner Luvkesh has been arrested. Remember, there were major lapses in that in the Flourish Inn hotel, which led to the death of 21 people. There was There was no fire NOC there. The building was 15 meters above its standing, which led to that there was not enough safety protocols there as well. And 13 hours later, the police officials have arrested Lufkesh Bajaj, the man behind that flourishing hotel in South Delhi's Malviya Nagar. He also owns two other hotels in the same vicinity. One is named Green Residency and the third is also named Flourish Inn. Let's go across to Tejshree, who's also been tracking the story very closely. Tejshree, after 13 hours, police

0: take a listen to what he said.
1: सर, ये जो घटना हुई उस पर एक इल्ज़ाम आप पे सीधे लग रहा है कि आप लोग 45 मिनट लेट पहुंचे, क्या है सच्चाई? और जबकि कहा जा रहा है कि स्टेशन जो है फायर डिपार्टमेंट का होटल से लगभग 3 मीटर की दूरी, 3 किलोमीटर लगभग लगता है उसमें।
2: देखिए, कॉल हमें जो मैं अभी टीवी देख रहा था तो उसमें एक लेडी ये भी क्लेम कर रही थी कि सुबह 8 बजे आग लगी है, लेकिन हमें जो कॉल मिली है वो 8:50 पर मिली है। 8:51 पर हमारी गाड़ियाँ टर्न आउट हो गई थी और गाड़ियाँ तुरंत ही मौके पर पहुँच गई थी। इसका आपको इससे पता लग जाएगा क्योंकि हमने जाते ही दोनों ऑपरेशन शुरू करे, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों करे, और बेसमेंट में हमने जो है लोगों को सबसे जाते ही सबसे 6 लोग हमने बेसमेंट से निकाले थे। उसके बाद हम आग बुझाते गए, अंदर एंट्री लेते गए और हमने लोगों को ऊपर वाली फ्लोर से भी निकाला। तो फायर ब्रिगेड की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है।
1: बिल्डिंग में सर नीचे क्या, आखिर क्या सब होटल था, पूरा रेस्टोरेंट था क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर में?
2: देखिए, बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है। उसके अंदर जो है जो हमें वहाँ मिला वो हर कमरे में खाना बनाने का सामान मौजूद था, साथ में ग्राउंड फ्लोर पे कुछ LPG के सिलेंडर्स वगैरह भी थे, तो किचन वगैरह लगता है उसमें चल रही थी कोई, और बेसमेंट में भी कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे। और बाद में जब हमें वहाँ पे मंत्री जी वहाँ पहुँचे मौके पर, तो तब हमें ये मालूम चला कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट के अंदर कोई लाइसेंस लेकर के उसको रन कर रहे थे। वहाँ लोगों ने हमें बताया कि इसमें जो मैक्स हॉस्पिटल में जो आते हैं मरीज, उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो यहाँ स्टे करते हैं, वो रुकते हैं उसमें।
1: कोई PG भी चल रहा था क्या उसके ऊपर? बताया जा रहा है कि यहाँ पे विदेशी नागरिक जो थे वो उसमें रहते थे।
2: नहीं, वो PG का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन विदेशी नागरिक वहाँ ज़रूर थे। जो लोगों हमने निकाले हैं, जो हमने रेस्क्यू करे, उसमें फॉरनर्स भी थे, और ये मैक्सिमम वही लोग होंगे शायद जो फॉरनर्स, जिनके जो फॉरन से इलाज कराने के लिए जिनके मरीज यहाँ आए हुए होंगे, वो लोग रुके होंगे उसमें।
1: सर, थोड़ा ब्रेकअप अगर बता पाएं, कितने लोगों ने आपने निकाले हैं टोटल, कितने उसमें डेड थे उस समय जब आप लोग लेके आए, और कितने का इलाज चल रहा है?
2: देखिए, हमने टोटल 37 लोगों को रेस्क्यू किया है। इसमें से मैक्स हॉस्पिटल से भी डिटेल हमारे पास आई है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमने भेज दिए थे कैट के द्वारा, या जो PCR वहाँ अवेलेबल थी उनके द्वारा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल से हमारे पास जो डाटा आया है वो ये है कि 38 लोग वहाँ पर एडमिट हैं, उसमें से 20 इंजर्ड हैं और उसमें से 18 की डेथ हो चुकी है।
1: और हमने ट्रॉमा सेंटर गए, वहाँ पर भी 3 बॉडीज़ शिफ्ट की गई हैं, और ये भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस के भी 10 जवान उसमें झुलसे हैं आग में।
2: देखिए, ट्रॉमा सेंटर की डिटेल मेरे पास नहीं है, दिल्ली पुलिस का भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे एक आदमी को भी इसमें इंजरी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए उनके हाथ में कट लगा है, उनको भी हमने ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था।
0: And we're getting you breaking news. It's now been confirmed that Lufkesh Bajaj, the owner of the Flourish Inn hotel there in South Delhi's Malviya Nagar, has now been arrested by the Delhi police. This, of course, comes after he was on the run for more than 13 hours. Lufkesh Bajaj, along with his partners. What we are learning right now is that he has been arrested by the Delhi police, and he is being questioned by the Delhi police officers. That's the image of the owner of Flourish Inn, Lufkesh Bajaj, who has now been arrested after being on the run for almost 13 hours. He will have some pertinent questions to answer about the security and the safety lapses at the Flourish Inn, which led to the death of at least 21 people, 17 of them foreign nationals, and as we speak, at least 40 to 45 people, they are admitted in hospitals because of the grave burn injuries. Let's go across to Tejshree, who's been tracking the story very closely. Tejshree, after being on run for 13 hours, Lufkesh Bajaj now arrested by the Delhi police.
3: Well, absolutely. As you were talking, Resha, that now there will be a due procedure followed. Earlier, in fact, a couple of minutes back, while we were talking about it, the police first detained him, and now he has been officially arrested. Now, in fact, his questioning will begin, and the investigation will, in fact, be unfolding around this entire matter as well. As you have rightly mentioned, that pertinent questions will be asked to him, say it be about how he flouted the norms. Not just about this particular hotel, also in fact remember, Raisha, that all the other properties also that he owns will now be under the scrutiny. That will also be monitored, so as to from where did he get all the documents of approval, and whether if he has the documents of approval or not, that will also be a part of investigation. Who was helping him, and how in fact was he able to build a building of G+5?
0: Right, Tejshree, because for the benefit of all our viewers, Lufkesh Bajaj just does not own Flourish Inn in South Delhi's Malvinagar. He has similar kind of two more inns. One is called Green Residency and the third is also called Flourish Inn. And he will have to answer some pertinent questions because Tejshree, he's clearly flouted all rules and regulations. There was no fire NOC. He cramped up 50 to 60 people. He made 20 to 25 rooms in a building which only had permission for 6 rooms.
3: Well, absolutely. And the bigger question over here is that while he was building such a tall construction or for this infrastructure, what were the authorities doing? And not just that, but yes, the permission was only for 6 rooms. That was G+1 at a point of time when he in fact submitted the documents as well, and later after that, in fact, he started building the upper floors as well, and perhaps that is why he ended up in building 25 rooms in which more than 40 individuals were staying. And you cannot imagine even the horrific conditions that they must have been facing, that they must have been gone through. And the eyewitness also in fact narrated the horrific ordeal so as to what they actually saw. And they saw actually people jumping from the windows, yeah, because there was no emergency exit as well. There was no other way to step out from the building except that one entry or exit gate. We also saw that how narrow these lanes were. So not just one property, but all the property will now be under scanner that are owned by this Lufkesh Bajaj.
0: Right, Tejshree, absolutely. Thanks for sharing a very crucial update. And big news coming in. Lufkesh Bajaj has now been arrested after being on the run for at least 13 hours. As we speak, he's being questioned by the Delhi police authorities on the major safety lapses at his hotel, Flourish Inn, in South Delhi's Malvinagar. On that note, we slip into a very short break. But come right back. Newsnight coming up next with me, Raisha Singh.